धर्म संदोक तो ने ताहन जरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल लगीने हाउसिक पुंफा मसिदा ताबीरसे सीधा हिदाक नसी की सीधा हिदाक ता चनम की कानवा खंगमीनसे

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबी रसी तोंगान तोंगान बा सैसक बा सिंग ने सकबा मतम इसे खुदोल गया हम बदल लुबी रसी हुई ड्रोम नौबी की खंजल दा एक एंटरटेन शुबना सैरिंग बा मतम इसे

0: लुसैन, मेरा बच्चा, कहाँ हो तुम? रोज तो अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर वापस आ जाता था। इतने देर तक खाने पीने का ख्याल ही ना रहा। कहाँ चला गया ये लड़का? अब तो मेरा मन व्याकुल हो रहा है। एक बार बुलाकर देखती हूँ। लुसैन, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो। लुसैन, ओ लुसैन।
1: माँ, मैं आ रहा हूँ। कहीं नहीं गया, मैं यहाँ हूँ।
0: आओ आओ।
1: आ गया, देखो मैं आ गया।
0: हाँफते हुए भागकर क्यों आया? ध्यान से धीरे धीरे ही आते। मैं यहाँ हूँ, आ जाओ, अंदर चलते हैं। मैं तो ये सोचकर परेशान में पड़ गई कि कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें उठाकर तो नहीं ले गया।
1: नहीं माँ, मैं बच्चा होकर भी बहुत बहादुर और बलवान व्यक्ति हूँ।
0: हे, अभी तुम इतना भी बड़ा नहीं हुआ, इसलिए बहादुर बच्चे कहो।
1: ऐसा कहना था क्या माँ?
0: अच्छा चलो, अब खाना खाते हैं। खाना परोस रखा है, हाथ मुंह धो लो।
1: आओ माँ, हम सब खाते हैं। सब्जी बहुत स्वादिष्ट है माँ।
0: खाते समय ज्यादा मत बोलो, खाना गले में अटक जाएगा। धीरे खाओ, बातें करके खाना नहीं खाना चाहिए।
1: ठीक है माँ। माँ, खाना खाने के बाद मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ।
0: अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लो बिना कुछ बोले।
1: जी माँ। माँ,
0: हाँ?
1: अब तो मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ ना? अब तो खाना भी खत्म हो गया।
0: क्या बातें करना चाहता है ये लड़का? लुसैन।
1: जी माँ।
0: क्या कहना चाहते हो तुम?
1: मेरे देर से आने का कारण क्या आप जानते हो माँ?
0: क्या कह रहे हो तुम लुसैन? मैं कैसे जानूंगी कि तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, तुम बताओगे तब जानूंगी मैं।
1: तो मैं बताता हूँ माँ, ध्यान से सुनना। मैं पड़ोस के दादी के घर गया था।
0: तुम उनके घर किस कारण से गए थे? उनसे तो एक बार भी नहीं मिला।
1: मैं वहाँ उनके घर जाने के ख्याल से नहीं गया, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तब मुझे प्यास लग गई।
0: फिर?
1: मेरे सारे दोस्त तो चले गए थे।
0: हाँ, और?
1: मैं अकेला ही उनके घर गया। तभी उन्होंने मेरा नाम पूछा माँ। किसका लड़का है? ये भी पूछा। और माँ, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर भी कहा है।
0: तब तुमने क्या उत्तर दिया?
1: माँ, मैंने मेरा नाम लुसैन बताया। पिताजी का नाम तो नहीं पता, और कहा कि वो तो एक भी दिन घर नहीं आया। तभी उन्होंने हंसकर कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। यहाँ भी कहा कि तुम्हारी माँ मिजोरम की है, वहाँ हमारे गांव के सबसे सुंदर स्त्री है।
0: ऐसा कहा उन्होंने, आगे क्या कहा बताओ।
1: जी माँ, बताता हूँ। दादी ने फिर कहा कि हमारे एक बहुत बड़ा बाग है। वहाँ सुंदर सुंदर पौधे, साग सब्जी उगते हैं। आपने एक दिन वहाँ से एक बैंगन तोड़ी, तब आपके हाथ में बैंगन का कांटा चुभ गया। कांटा चुभने से आप गर्भवती हो गई। समय बीतते गए और आपने एक सुंदर और वीर पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र का नाम उसने लुसैन राजकुमार रखा।
0: फिर दादी ने आगे क्या कहा?
1: माँ, दादी ने आगे नहीं बताया, उसने कहा घर जाकर अपनी माँ से पूछ लेना। ये कहकर वह हंस पड़ी। फिर उन्होंने घर वापस जाने को कहा। माँ, वो लड़का कौन है?
0: तुम उस बच्चे को जानना चाहते हो?
1: हाँ माँ, बहादुर बच्चे को जानना चाहता हूँ, बताओ ना माँ।
0: वो बच्चा और कोई नहीं, वो तुम हो। तुम लुसेन राजकुमार हो।
1: सच में माँ?
0: हाँ।
1: मैं बहुत खुश हूँ, मेरे रगों में इंसान का खून नहीं, इसलिए मैं बलवान हूँ, है ना माँ?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरा बेटा साधारण सा लड़का नहीं है। संसार का कोई ऐसा काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुमको बड़े नाजों से पाला है।
1: दादी ने सही कहा, माँ तुम बहुत सुंदर हो, गांव में आपसे तुलना कोई नहीं कर सकता, आप सबसे सुंदर हो ना।
0: बच्चों को अपनी माँ सबसे सुंदर और प्यारी लगती है, इसलिए हमारे गांव में मुझसे भी अधिक सुंदर और भी स्त्रियां हैं। मुझे भी तुम औरों से अधिक प्यारे हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो।
1: सच में माँ?
0: ये तो स्वाभाविक है, वह दादी भी बहुत प्यारी है, वो इस गांव के हर किस्से जानती है, मुझसे भी बहुत प्यार करती है, वह बहुत चतुर और ज्ञानी औरत है।
1: ओह, मेरे बारे में कुछ बच्चे चुपके से बातें करते रहते हैं, मुझे तो खुल के नहीं बोलते, मैं साधारण बच्चा नहीं हूं ना, इसलिए। आज मैं जान गया माँ, मेरे दोस्त मुझे बहुत प्यार करते हैं, लगता है मुझसे भी डरते हैं।
0: ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ा आराम कर लो, थक गए होंगे, मैं भी कुछ काम खत्म कर लेती हूँ।
1: जी माँ।
0: मेरे बेटे बलवान ही नहीं, बुद्धिमान भी है, इसलिए अब उसके 6 भाइयों के बारे में बता देती हूँ, पुरानी बातों को फिर से बता देती हूँ। कहाँ है ये लड़का? लुसेन, कहाँ हो तुम?
1: माँ मैं अंदर हूँ।
0: बाहर आओ बेटा, कहानी सुनाती हूँ।
1: जी माँ, मैं आता हूँ।

0: माँ, मजेदार कहानी है ना? मुझे सुनना है, मुझे मजेदार कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है।
1: आज मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने वाली हूँ वह बड़ी भावुक कहानी है। सही समय का इंतजार करते हुए इस बात को मैंने अपने मन में दबा कर रखा था।
0: अच्छा माँ, सुनाओ, मैं सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ।
1: लुसैन, मेरे बेटे, तुम मेरे अकेले बेटे नहीं हो, तुम्हारे 6 और भी भाई हैं।
0: क्या कहा? सही में मेरे 6 और भाई हैं? मैं कितना भाग्यवान हूँ।
1: हाँ बेटा,
0: लेकिन माँ, वे तो एक बार भी घर नहीं आया, वे अब कहाँ हैं? अपने बेटे को तो बताओ ना, अपने भाइयों के साथ हंसी खुशी रहना चाहता हूँ मैं।
1: ओह लुसैन, तुम्हारे 6 भाई अब घर नहीं लौट पाएंगे।
0: क्यों नहीं लौट पाएंगे माँ?
1: तुम्हारे भाइयों का मन तुम्हारे जैसा साफ नहीं है, वह बड़े दुसाहसी थे। एक दिन वह काले अजगर का शिकार करने गए थे, तब से नहीं लौटे। अजगर ने उन्हें जिंदा निगल लिया।
0: ओह,
1: बुरे ही सही, मेरे बेटे तो हैं, मुझे तुम्हारे भाइयों की बहुत याद आती है।
0: माँ, उसके लिए परेशान मत हो, मैं अपने भाइयों को वापस लाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ।
1: नहीं नहीं लुसैन, तुम वहां नहीं जा सकते।
0: क्यों?
1: तुम मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हारे भाइयों के साथ जो दुर्दशा हुई है तुम भी उस दलदल में फंस जाओगे, इसलिए तुम वहां मत जाना लुसैन।
0: माँ, तुम घबराना मत, मेरे भाइयों को मैं वापस जरूर ले आऊंगा।
1: नहीं नहीं लुसैन, नहीं।
0: आपका बेटा आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ, उस काले अजगर को मारकर मैं अपने भाइयों को बचाऊंगा।
1: हे भगवान, क्या होगा इस बच्चे का, ना मेरे बच्चे।
0: जी माँ, माँ मैं अब जाता हूँ। बिना कुछ खाए दूर तक चलते रहने से पूरा थक गया हूँ। अब ये तो एक छोटा सा झोपड़ी है, आवाज लगा कर देखता हूँ, कोई है घर में? कोई है?
2: जो किसी इंसान द्वारा पकड़ सके।
0: ओ दादी, वो 6 भाई और कोई नहीं है, मेरे सगे भाई है।
2: अच्छा?
0: उस असगर को मारकर मैं अपने भाइयों को बचाने के लिए आया हूँ।
2: बेटे, तुम्हारे 6 भाई तो बड़े थे, तुम तो अभी बच्चे हो, वह अजगर बहुत भयंकर है, तुम उसको मार नहीं पाओगे। तुम क्यों अपनी जान आफत में डाल रहे हो? दूसरों का आदर सम्मान करना नहीं जानते थे। तुम उस भयंकर अजगर के पास मत जाओ, रात यहाँ बिताकर सुबह अपने घर लौट जाओ।
0: दादी, इस बात के लिए आप परेशान मत हो, मैं अवश्य उस अजगर के पास जाऊंगा। आप मुझे उसका पता बताओ, मैंने अपने भाइयों को सुराने की प्रतिज्ञा की है।
2: ठीक।
0: मैं अभी निकलता हूँ, अजगर का निवास स्थान भी यहाँ से दूर है, सुबह निकलना ठीक रहेगा।
3: ना, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा।
0: अच्छा सुन, मैं लुसैन राजकुमार हूँ, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ। तुम्हें मारकर अपने 6 भाइयों को तुम्हारे पेट की कैद से छुड़ाऊंगा।
3: तुम जैसे बच्चे मुझे ललकार रहे हो, रुक, आज तो तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों की तरह निगल जाऊंगा।
0: अजगर मर गया, अपने भाइयों को बाहर निकाल दूंगा। अब मेरे सब भाई निकल गया।
4: अरे बच्चे, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो?
0: मैं आप लोगों का छोटा भाई लुसेन राजकुमार हूँ। माँ ने आप लोगों को बचाने के लिए भेजा है। मैं आप सबसे छोटा हूँ। मैंने इस अजगर को मारकर आप सबको मुक्त किया है, मेरा विश्वास कीजिए।
4: इतना छोटा बच्चा, तुमने अजगर को मारा है? मुझे तो हंसी आ रही है। चल जा, आओ मेरे भाइयों, हम घर की तरफ चलते हैं। इन्हें यहाँ रहने दो।
0: नहीं नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। ठीक है, अब मैं जान गया ये लोग बहुत बुरे हैं। मैं अजगर के टुकड़े लेकर माँ के पास जाता हूँ।
1: हाँ बोलो बेटा।
0: मेरे सब भाई बहुत बुरे हैं।
1: क्या?
0: मैंने अजगर को मारकर उनको बचाया। वे लोग मेरे इस बात पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने मुझे वही अकेला छोड़ दिया। मैं इनके साथ नहीं रह सकता।
1: लुसेन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? असल में वे लोग बहुत मतलबी हैं। बच्चे हैं सोचकर मैंने प्यार से पाला है उन्हें।
0: माँ, आप मुझे अपने कच्चे धागे का गोला दे दो। मैं इन दुष्टों के साथ नहीं रह सकता। मैं आपके धागे के सहारे देवलोक जाऊंगा।
1: ठीक है बेटा, अब तुम नहीं मानोगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी।
0: ठीक है माँ, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना माँ। तुम मेरे पीछे धागे पकड़कर आ जाना।
1: हाँ।
0: याद रखना कि आप धरती की तरफ नहीं देख सकते। ऐसा करने से बीच में लटक जाओगे, इसलिए नीचे मत देखना।
1: हाँ हाँ, मैं समझ गई बेटा, ऐसा ही करूंगी। आओ चलते हैं, चलो।
0: माँ, धागे कस कर पकड़ना।
1: हाँ, मैं कस के पकड़ती हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर है। चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे बच्चे रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे हैं।
0: माँ, अब तुम देवलोक पहुँच गए, हम यहाँ खुशी खुशी रहेंगे।
3: माँ, माँ, लुसेन, लुसेन, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? देवलोक से उतरिए, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे।
1: मेरे सब बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं। लुसेन ने तो नहीं देखने को कहा था। माँ का हृदय कितना कोमल और लाचार है, अपने पुत्रों की आवाज अनसुना नहीं कर सकती। जो होना है हो जाए, एक बार अपने बच्चों को देख लेती हूँ। मेरी धागा लटक गई। ओह, देवलोक भी नहीं जा पाऊंगी और नीचे नीचे अपने पुत्रों के पास भी नहीं। नहीं, नहीं।
0: माँ, आपने मेरा कहना नहीं माना। आप देवलोक और धरती के बीच लटकती रहोगी। आपकी ऊपरी सिरा तंदित होकर और नीचे का सिरा पवन जैसा हिलता रहेगा।

누시 꼴로이 진단 미네라미 왕렌 카라땅기 마담니 캉호데 바이마눙다 칼레이 도누나 야로포탑 마부 하이시라 하이르기 이사비오 누시바 람렌 돌붕 람담다 마포 탕징 라기 세렌 파바타나바다 징우 마나 렌쿠세누 아도기 마탁다 나나오기수 야로우 사지 마차 아마탕부 힝나 파비르 우바 아숨나 하이라 키라미 도누 야와 타르가 가댕나 누라 이네 마차 탕징 마나 쿠세누 마탐마시다 마사비 가댕기 나빠다 레이랑나 좀닝 티바 아마텟 피라미 이사비오 눔시바 람렌 돌붕 람자우다 야로우 사파루바다 아와 흑종 랑바디 나나우 아슈 야우리 하이나 파이 마눙다 칸비유코 ngase korau asida pakhang na de thetliba leirang na chomasina nasanau mahut sel le khanbiu karigumba leirang na chomasina pattuna khuiduna leiman chandriba makhai nanau isu tek ta kaidana leiri khangnasi asum hairaduna chingna chingna yengnarami nungshi koloi paume naraga kadang thang jahan basu mongba maran tamlakhi nonga laklami kadang arung han basu loina gadaba macha manau kaya loinana loktak pat ki maikai tam khirami kadeng thang jahan basu pu gadaba khutsu khutlai ga loinana macha manai kaya loinaduna torbung maikai panglaklami sagi saram yeng langoi chen koisinduna yaro saram chama phanaba kanna mahai mahai hotarami matamaseda moirang kanglei pung mayonda moirang ningthau puriklai gi liklai lik ningthau ga koloi mingma nabi ningthau manai singna thirakhirami mamai thangda laizing lakpagi mamom ahenbi tonu laizing lembi gi mapamda naiba okshu lakpa tolo khomba amadi kaisum lakpa na chingba prab changna raklami laizing lakpa phamen da phamli mayam ubada harau harau kaushinduna phaminai hangjai laizing lakpa na pathau phamnai ba ipathau pumba marup aigi ipham da linglakpadi marup moirang ning thogi karamba athuba sanaya thang leirabage takpi sidana ओक्सुलाकपना पाथो मचे मरुम थुपतुना थमलरोय पाथो कादा हेक्त हंगत लगे हंदकते मोयरांग निंगथोगी सनाया थंगसिदे सनागी मथकता तंफा थिन बहाइबदो थोकलरे इता हानसो मपो मोयरांग निंगथोगी सना हकथेंग ओइबिरि निदो अदुगिशु मथकता नमोम इबेमा लाइजिंग लेम्बियसिबो sana likthang oinage liklai maru hungani leimakon kaduda ningthau konda onghan sine pathau waramasi tabada mapal pathau laizing lakpa pai manungda harau mathoi kabra ningthau gi maku oigadauri haiba wakhalda thoina khalluba leikhidre thoina dum kanjau rakhi laizing na ngai hak chaning tan khallure aduga asumna पाथौ लालोई पुंबा लाइबक फबनी हे अहाक से अदु मदु मोइनमक मपा अइनो मपानी इमोम ओबी महाक्ति मथक्त अम सातबी मखाद अम पोमदविनी निंगोल ओबी महाकी अपा मनिंग थुंगनबदी मपा ओइब अइखोई थौदानी को पाथौ करिगुंबा इमोम मसिन लैम कोंद लैनिंग दबगी इहुल तमलबा थोक मपानी हाइदुनसु ऐन करेंगे वरम असी ताबद ओक्षु लाखी तौ नुद लाइजिंग लाख अगंब निंथौ सना याथंगने ममांगदसो हाइजक्रे अदुगिसु मथकता नचाइबे मसिना लैबाकी ममा ओइबदे अफबनी खंद

मखल मथल की थरम कयान लेचल उदुन सेमनिबा आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दा हौजिक मयाम की दमक पुदुन लाचरी गुड मॉर्निंग मणिपुर थरम असिदा अदोम नखोइदा बिबा मणिपुरी फिल्म अमदी मतमिसै सिंग खान बिरक्तुना थरम सरु याबियु एखुगी थमजरीबा मोबाइल नंबर 9863102016 अमुका हननिंग सिंजरी 9863102016 अदोंगे एसएमएस नाइजरी।

मथंग दता पी रसी इदोम चचरगी फिल्म असिदगी नंदे शुरीगी खोंजलदार जी कविता सैरिंग गोपी एमदी तोमना सैरंग बैसे खुदोल तमचरी तमिनसी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मधंग द खुदोल तमजरी सुनीरी चौहान देगी गीत।

0: आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग नुमियुंग पुंग तरानी थोई तारे मणिपुरी द पाओ ताविरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी ने पाओ पचड़ी आहन बताओ मरु इबा पाओ मुख्यमंत्री इमनाम खेमसा ने हरी लमदम असीर करम ने शांति पुरकत के हाइबसी पुनः खनमीना बा तंगाई फते मणिपुर एक्साइज की हम्बुतरा मापन सुबह रेजिंग तेगी थौरम हौजिक पांगथोक्ली प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लेबाग असिगी नहा ओरिबा डिप्लोमेट चिंगदा मखोइन पोस्टिंग तारीबा लेबाग सिंगी मियाम का अफब मरी थमदना भारत का लेबाग सिंग अदुग हियाना नक्सिन हना बहाइरी अमिशु शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूजीसी अमसुंग एआईसीटीई की ऑफिशियल सिंगा अवांग ताकी महितंपम संगसिंग मापांगल कनखत हनबा मिफम पांगथोक्तुना खनखरे निपु मंगा सुपर हॉकर्स डे सेलिब्रेशन ngजी पंगथुकली मणिपुर हॉकर्स एसोसिएशन ने सिंदुने इंफाल वेस्ट की हयिंग खोंगबाल दलेबा लाइनिंग तो सनामही टेंपल दा तरुमसी हौजि पंगथुकली तरुमसी दे सरु यारतुना मुख्यमंत्री इमनाम खेमसा ने हाय शांति पुरक प खक्तना चौखत प पुरक पंगम गनी माग ने हाय लमदा मसी दे करम ने शांति पुरक तके हाबिसि पुन्न खन मिना ब तंगाई फते राज्य से हौजे हौजे जाति कांगलो मसल की मरक्त मूक्नरी लेट्रब चाखु थौरंग की थबक थौरम से माइ पाक चंगसिनब यागनी मुख्यमंत्री ने हाय लमदम मई अयब शांति पाब कनागुम खरना शांति हंजिल हन पादब यौरी श्री खेमसा ने हाय नेशनल हाईवे टूद पेसेंजर पुब गाड़ी चेनब नुमी सूजिले एरोप्लेन की भरा वांग पेसेंजर कया एरोप्लेन तोंदना चटना बस तोंदना चलि मांगना है गरंग जाति कांगलुप की मियोय सिंग वरी सानरे मदुदा जाति कांगलुप अने की मियोय सिंग दा लंबी एसिडा पेसेंजर चलीबा सिंग दा अथिंग बा पीबी धनबा अपील तो की श्री किमसा ना है
2: सरकार खतना नक तब थबक तब थिंग बंग मोय प्रजा में आमसु कोऑपरेशन पीबी बता अवनी कुकी की अमदी नगा की कम्युनिटी अनिमक ना सरकार ने हाइजा बत्ता भी रकान दा लंबी दू थादू बिरेनी थिंग बिद्रीनी अदुनाई कोई पुन्ना मणिपुर तक खुंडामी नरी बा कम्युनिटी पुनः बक ऐकोई मयाम पुन्ना मणिपुर नागक पनी ऐकोई पुन्ना मणिपुर कंगदो बनी है वो वाकल सी खान बगी मतम दू ओइरे है बस मत हमजगे
1: तौरम तुटे एमएलए सापम कुंजकिशोर लौरेंबम रामेश्वर ने सिंह बचर याकी मणिपुर एक्साइज की हम्पुतरा मापन सुबह रेजिंग तेगी थौरम हौजिक पांगथुकली राज्य सरकार की एक्साइज डिपार्टमेंट ने सिंधुर इम्फाल वेस्ट जिला की लंफेल पाता लेब एक्साइज हेडक्वार्टर्स ऑफिस पांगथुकली थौरम मुख्यमंत्री इमनाम खेमचान चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल सरुक यारी थौरम से मौ निथी तब एक्साइज पर्सनल एवॉर्डू लाथोनी पालेमित मरी लेना विभाग अगर कर्मचारी मुख्यमंत्री इमनाम खेमसा यफ पाजल पीरली सोशल मीडिया थगल वारोल मुख्यमंत्री ने हाय एक्साइज पर्सनल आईन बुक सेंदुना थम आईन की वाद पोजे पुदो पुचिन तब आईन याद पोलम

야 미얌다 지진 내다나 보호나보다 레우리브 통당 증아지 얌나 칭타닝아니 어험치바 필름 애플리시에이션 코스 리싱아니 군다룩 로신바기 타우람 호직방 톡리 마니포스타 필름 앤 텔레비전 인스티튜트 나 신도나 임팔기 팰리스 컴파운드 레이바 케슬 호텔기 캄바홀다 방톡리바 타우람 아시다 마니포 사카르기 아트 앤 컬처기 세크레터리 나우레 프라빈 칭 아메슈 마니포 스타일 필름 앤 텔레비전 인스티튜트 기 디렉터 앙옴 치젤렘 비나 칭바 체룩야디 नेशनल हाईवे कुंठा तरे इम्फाल जिरी बामलम बिड नोमद चंद्रबा यात्रा पोलम सिंह पोपा गाड़ी सामयंग कई जिरी बामद की इम्फाल तम नंगसी अयुक थोरक्रे एको की जिरी बाम पामिन हाई गाड़ी सिंह अदुकी मनुंगद एलपीजी तरा तरे पेट्रोल तरा तरु डीजल निपान ट्रांसपोर्ट गाड़ी मापन हिदाक लंगथक पोबा गाड़ी अहुम येन मचिन जक तरा सीमेंट तरे अमदि अतै पोलम सिंह पोबा गाड़ी सिंह यावरी ताबिरी पपाउसी आकाशवाणी इम्फाल दकिने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लेबाग असकी ना ओरिबा डिप्लोमेट चिंगदा मकोइन पोस्टिंग तारीबा लेबाग सिंगि मियांगा अपबमरी थमदुना भारत का लेबाग सिंग अदुगा हेना नक्सि नहन बहाइदी लेसिगनि कुनमंगा बेट्स की इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस ऑफिसर ट्रेनी सिंगंगरांग सेबा टेटेड ओरिसा न बजा श्री मोदी ना हाय ऑफिसर सिंग ना हानगी डिप्लोमेटिक सर्कल सिंगि वांगमदा मियांगा अपबमरी सगतन बहुनगतबनी प्रधान मंत्री ने लेबाग असकी इना खुलब संस्कृति का टेक्नोलॉजी अमति इनोवेशन का पुंछिन दुना मालेम दा भारत की मतिक मगुल हेंगट हन बसु हाइकी थरम दुद लेबाग असकी तुंगान तुंगान ब मफम सिंग दकी पुना आईएफएस ऑफिसर ट्रेने यांखै सरु याकी गृह मंत्री अमित शाह ने लेबाग असिदा नारों द मितो संगछि लक पथिंगना ब अकन बथब पैखना ब एजेंसी सिंग द पक्तक पीखरे न्यू दिल्ली तंगारंग मापन चुब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस लिसिंग अनि कुंतरुक होंगदोक लतुना श्री शाह ने हाय नेशनल सिक्योरिटी द सिंगना रुक पसिंग थेंगना नबा एसओपी सेम नबगी तमा मल्टी एजेंसी सेंटर प्लेटफॉर्म सिंग द फंगदी बा ई पाउ सिंग एआई द युम्फम ओइतुना कुपन थिजिन गदबनी मांग हाय टेररिज्म मपुंग फाना थेंगना नबा गृह मंत्रालय गी फ्रहार स्कीम थबक द ओनथोक नबा ट्रेनिंग तोबगी तंगाई फदबले मिफम असी की सरुक अम ओइनंगसी सब एरियल सिस्टम सिंगदगी लाक्री बसिंग नरक बसिंग असी बुथेंगना नबा पाइकट कदे थबक सिंग ब्लू इकोनॉमी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर अमसुंग मसीना नेशनल सिक्योरिटी जपीरीबा सैथेंग सिंगी मतांग दखनगनी पनबयाई मिफम असी की अहन पनु मितंगा दांग काउंटर टेररिज्म एनालाइसिस अमसुंग मल्टी एजेंसी सेंटर सिंगी मतेंगना थबक पाइकटबा नारकोटिक्स कंट्रोल की विजन डॉक्यूमेंट आइन कायना संगसिलक पमितोप सिंग मसा मसागी मरम दमदा हलन खिनबा साइबर क्राइम थिंगना बथौरांग सिंग अमसुंग पाकिस्तान ने सथरक पा प्रोक्सी वॉरफेयर की मतांगदा कुपना खनखी हाइब्रिड फोन मेट पंगथोक पमिफम असिदा लेबा असिगी तुंगान तुंगान बमाफम सिंगदा मिओय सानिपान्यां खैरोप सरुबियाखी लागली पंजाब विधानसभा मिखल द भारतीय जनता पार्टी ना विधानसभा सीट चाम तरह तरह तक लंबा थेंगनी पतियाला द पंगथोक अहन ब जोनल मीटिंग द डोल असी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बी एल संतोष ने हाय राज्य असी चावना अहोंब पुरक्तुना डोल असी ना मिखल द माई पाक्तुना सरकार सेमगनी डोल की जनरल सेक्रेटरी बी एल संतोष की नुमित इन की पंजाब खोंचट गरंगदगी होगी खोंचट असीद डोल असीना मिखल गमरी लेने पाखली थबक थोरम सिंह कुपन यगनी श्री संतोष ने गरंग पंजाब तुंखीबद राज्य की बीजेपी की मको थोब लुचिब केवल सिंह धिलोन डोल अस की को इंचार्ज नरेंद्र सिंह रायना चंडीगढ़ एयरपोर्ट महापो तराम ओखी मांग पतियाला बतिनदाद पाथोब डोल अस की मिफमदू सरुक याखी खोंसट असीद श्री संतोष ने दोल की लुचिब थौमी उन्नदम कयासु पाथोनी केंद्र की शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अवांग की मही तंफम इंस्टीट्यूशन मपांगल कनखट हनब पाइब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यू जी सी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ए आई सी टी ई की ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुटांग मिफम पाथोन खनखरे सोशल मीडिया थगलक वरोल मंत्री ने हाय मिफम मही तंफम संगद सना खोब हेन युखनब मसा क्या महिरोई हईथो सिंथब क्या खादोनब मरी लेनब खेलो भारत की मांग कुपन खनखी अता पुटब पोलम सिंह मपालम थादों थाजिन तौबद अतिब तमलब सरकार ने लौथोरे मैं अता मैदा सेमोलीना पोलम सिंह साब अत पोलम क्या लेबाग पुथोक पुछ तौब यहाँगनी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड
DGF tina thokpa notification amagi matung ina akkhanaba gehu khada ke export policy de chu ahong balai rakani Sel to Mantri Nirmala Sitharaman gi Canada amasung America gi official oba khongchet ngasi de gi horagani khongchet a sida lebak sung asiga sel tungwi tempang pi ba hinga thanaba sel thadab gi sang hinga thanaba mesung maliam gi hauji oriba sel tungwi phibam asigi yeng laga lam asida hina khumang yang china thabak paikhat minana ba gi matang da khanagani Security force na Satisgarh ki Veji police station na konba Sukma jila na konba mapham singda mawi singna losin juna thamlamba pokai beya ba masak sing nongmai amachung maru yauna yamlaba khujukulai ke apagat kre khujukulai singa du sarkar da changzar rakhraba mawi singna pirak pa pauk da yumpham oituna ngarang banda pahar amachung manur konda gi singgi mapham singda district force district reserve guard amachung bastar fighter singna thiumbagi thabak sa thabada phagat ki bani Operation at the SLR, BZL launcher, Majel lodging gun, countermat hand grenade gun, powder kilogram, Tarani Panyana, Yamlaba, Nomai Madukaya, Pagat Pangam Ki. Adubita, Madu Iba Pau, Amukana. Mukhyamantri Imran Khem San Hadi, Lamda Masida Karamna Santi, Purakata Kehavazi Puna Kanamina Batangai Fade. Manipu Excise Kim Putaramapan Suba, Raging Deki Taurum, Objik Pangtukli. Pradhan Mantri Narendra Modi na lebak asigi na oriba diplomat chingda makhoina posting tariba lebak singgi miyamga aphabamari thamduna bharat ka lebak sing aduga yena nakshi nahana bahairi amishu shiksha mantri Pralad Joshi na UGC amasung AICTE gi official singa awangba thaki maitam pham sang sing mapanglal kankhadhanaba mipham pangthuk tunak khanakre paulo jari

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून। हेलो,
1: हेलो तारे
0: ताजरे ताजरे ताबिरब्रा
1: हम
0: तरामनो उपचेरी कोलतो विरगली सिबु कनाओ विरबनो।
1: खादुमबली हुदुम काइदगी खुराइजम थराल
0: तरामनो उपचेरी करिकरम बवाफम थंबिदै नङा सिसिबु।
1: हम
0: ओ गुड आफ्टरनून लेडीज किंग ऐसी नहान वो भी दोरा
1: हाँ
0: नहान कई ताती तारगा कोल नू मत फाउ।
1: तारगा मामा अंदर ही हो गई गांडो अदू
0: होय होय
1: दे तो रहा मैं बा अदू आई की फोन नंबर से अकोई निपाई मम्मी डर लाई अदू दे कहीं नो तो इरा खांडे सुगाई पाई खालक दे बा
0: ए अदू की दी अगस्पान इंफाल द थोई दोग पा लेजेडी अदू गुम बगी खुदुंग चांदा बदी नो पागी ओयरो नो पीगी ओयरो लोइनमक नंबर मिंगदे लेबददि के सुकाइदि नुपी ओइरागा लोइरे एकोगी थामजरिबा। गुड आफ्टरनून लेडीज किसिदा अदुगा अदुगी वाखलोन दुमदि थादोक पिउ थैदोक पलेजेदि हाइने सेंगदोक चेरि ममांगदि दुमक तारागा कोलसि मयामदि दुम फंगबा सोमदि सुफंग फंगबिदबसिदबु करी कमाइन फौबिगी वाखलदा।
1: मुंगाई के बाद हम पाखल तब दो
0: हाय हाय
1: आई ना खंडना फोन नंबर से नुपागी मम्मी डले हुए थे ऐसी दी नुपी की थोड़ा नी ना पाखल तब रहा है ना खंडा
0: हाय हाय ऐसी दी पाइकट चरे घांगे ममांग द नुआई तबा लेबिरम ब मयाम सिंह दो को पिरो अदुम मखाता ना थावरम सिंह सु थवाई यंग ना ताबी हो हाय ना सु थमजरी। आकाशवाणी फाल की थावरम सिंह सी करी करी थावरम सिंह दी अदुम नुआई ना ताबी रीगे हो जिकान सिबो। ओ अतै सन्तोक चरिब मयाम सिंह सिदी खरा मसिंग हन्दन तारे हाइबी बने बनत्रा। होय होय अतै सिंह सु अदुम कानरब थोरम सिंह सन्तोक चरी अदुम ताबियो या थाग चरी ngasi अहान बसु फंगवि बसु ओइरे मखा तानसु अदुम तौबिरौ। गुड आफ्टरनून लेडीस्टा सरुग याबियु लोइनना अतोपा गुड मॉर्निंग मणिपुर गुड इवनिंग मणिपुर हक्सेल गी करिगी सु लैरी हयिंग सु थमजरी सु होय होय सुगुम मयाम सिंह दसु मखाता ना सरु याबिनबा थमजरी इसै मखाता हनजरी ताबिर ब मयाम ग पुन तामिनसी।

हेलो हेलो ताज़र है ताबीर अब्रा। हेलो ताबीर अब्रा आई ने दी याम सेंग ने ताज़र है ताबीर अब्रा। लाइन से नुआई त्रे मुखाताब कोलो मुंगाई मिनसी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, गुड आफ्टरनून सर।
1: गुड आफ्टरनून। तराम नो उपचारी
0: नामथोंदगी खड़ा।
1: नौरेम थोंग दगी सरदा है भी बको।
0: हाय,
1: ऐसी गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम दा करी करम बा वफ़म थंबी दो इनो थंबी हो।
0: इन्हें फुकसिंग बोले क्या जी सर हजिकांगी पाना यू था गा नती यू कई हाई नी नंग न तौर दे आइजु कजो बे तौर जुन हाय से अंग थेंग ने बको
1: हाय हाय
0: नंग खतंग आ मी जे आइजु नी नी नंग न तौर दो जि तौर दे आ दे हाय बदो के आ जुन तो हजन तो हनजन दबा
1: हाय हाय एकोगी मया
0: मसाम
1: इकाम
0: छु जु मांगे मसाम था जु लुई मांगे जु द तंग हाय जे मुने
1: हाय हाय मया इका बचिन जा खाइ बसिन बु अफबदगी दि फतब न खरा हेली हाइद न दुम मयाम न या न रब वफम सु
0: हाय
1: ओय।
0: माइन पीजु के हाय ने ए नंग न तो दे जे तो मी ने एकदम मोबाइल तो छन मी न बु बा इदम थिंग ना रे बा
1: हाय हाय
0: गाय म तो मी ने जु के हाय ने थक पा हाय बगा थक तब हाय बिच कितन के ने इदना
1: हाय हाय
0: मनम दो न म इदना
1: हाय हाय
0: अदुम से के हाय ने नुपा न फति या न पी न फति या ज्ञान दा दे
1: हाय हाय मागी फब फतबगी जगह सिंह दुम अमसु अमसु लेरमगनी हाइना खली लोइनना आइखोगी माइकै दगे दि थमजनेंगली बा वाफमसी इमुंग मनुंग काइदना नुसी जानना लेमिनना बगी
0: हाय
1: दमकता पुना मयाई गाब चिनजाक्सी यारी ब मखै थादोक मिनरगा पुन्न नुसी जानना हिमिन बसी ओइमिनसी हाइब वाफमसिनी आइखोगी माइकै दगे
0: माने
1: थमजनेनिसी।
0: सर
1: हाय यामना नुंगाइसै ममांगदा हंतक थागिदि अदोब तोपा थौरम सिंह दा फोनिंग प्रोग्राम सी फंग बी खबरा।
0: आई दी तई द दी पाक न कॉल तो दे बको गुड आफ्टरनून लेडी से खतंग तो इन सी ग अनि र सुरे फंगि दे
1: होय होय अद दी गुड
0: मामा हप्ता द म फंगरे दु ग सी फंगे न सी ग
1: होय होय गुड आफ्टरनून लेडीज की याम न थवा याम न ताबिरि बा मरुप अमनी हाइज बता रे दी।
0: होय असी म दे आई ओ सा क दे ग ओ सा थो ख जु के आई नी असा एंगा को सी प्रोग्राम दि लोगी ग दु ग सा गे ने सा जु सा अति ने अमन गा हु जु ता दो ने बा
1: होय होय होय यामन नुंगाइसै नुंगाइबा यामन मचंगोइबा वाफम म सुपुखत पिरे थागचरी थोरम सुरु याबिबगी दम
0: हागा सही छ बुझु
1: इसै मखा तहनजरी।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरमदा तरामनो उक्चेरी।
1: गुड आफ्टरनून सर.
0: गुड आफ्टरनून कनावी बीरो बनो।
1: सर, वहाँ पर तो कुनो रगी लाइट जब मूवी प्रियापति ने सर. हाँ
0: प्रिया बती है बीबो को
1: सर,
0: करी करम वापम थंबी दोई नोंगे से सिबो।
1: हाँ प्रोग्राम से कोई ले इसे बताऊँ फिर से उतार उतरे था बात चिंदले रगी सर. ना फिर तुम अमन जी फिर
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯆꯤꯟꯅ ꯆꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯠꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ
1: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ, ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕ ꯌꯨꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯪ ꯀꯥꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯏꯗ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯂꯥꯁꯤꯡ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯉꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯨꯛ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ?
1: ꯁꯥꯔ, ꯁꯨꯝ ꯑꯇꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯍꯥꯏꯗꯤ
0: ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯀꯣ, ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯁꯦꯝꯕ, ꯈꯥꯎꯕ, ꯇꯤꯟꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯥꯔ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛꯇꯗꯤ ꯉꯟꯅ ꯍꯧꯖꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯝꯃꯒꯀꯣ ꯁꯥꯔ, ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯁꯨꯕꯁꯦ ꯆꯠꯂꯨꯕꯀꯣ ꯁꯥꯔ.
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯤꯔꯣ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ. ꯂꯩꯖꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯍꯟꯅ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯁꯃꯥꯗꯣ ꯅꯤ ꯁꯨꯛꯄ ꯑꯃ ꯋꯥꯔꯨꯕꯤꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯥꯔ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯄꯟꯖꯥꯎꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯔꯤꯗꯤ.

0: हेलो हेलो, लाइन से तक है मखाताबा कोलम गाय मीन से हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून तराम नो उच्चरी
1: फोन तो जरी वही सर वही ना मॉन लिखा ही देगी फिर जो मुझे अनिता ने सर
0: विद्रोम ओंबी अनिता हाई भी बको
1: वही सर
0: कड़ी मटेल होना भी रहेगी ना सिसिबो
1: सर ये सीधी उठी मत होंगे या तो का उम्रों में मेरा का बड़ा मत आम हो रहे
0: अतो दी गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम सिंह साइताना ताना उई बगी खुदों चादा बदु दी मायो न विद्री ब्राव जिक्षा
1: सर गुड आफ्टरनून जे नहान गए ट्राई तो भी चंता हुआ तो थबक चुवा मन की जना कुछ संग दबो वे नहीं ट्राई तो वो कुम दबो ताप दी मैं उनका जे ये बोला था
0: हाय हाय
1: संग दबो है वो दी सारो जी फोन द रेडियो टे अब दस चंता हुआ तो
0: हाय हाय
1: सार सार है ये करी ने सार ना गाय रे तो हाय
0: हाय एक और की
1: अतो की थबक तो की लोई ना बहुत ना बता सार कोई जो लोई चंदा गम दबो
0: हाय हाय
1: कुछ कुछ आम याद है ना दी कुछ नम जना दी कॉल इस तक तो नहीं ना सब लोग जो रिंग साइड फास्ट तो ही इसे ही सांग था भी रहा इसे जगह हो रहा पड़ा रिंग लो चलन दायरे सांग लो कुछ भी रहा पड़ा तब करे वही जैसे
0: ओ ओ ओ ओ अदो बु कनागुम बदी अदो माइना हान बल फंग बिरो मगा मखाता ना फंगी दबे सुधु मग यावी अदो बु लाइबक पापा हाइज बता रे सोंग गी दी हौजी कूल सी लखत चरे फंग जरे करी करम बवा फम थंबी गनी थंबी
1: सर ऐ जी से सर ऐ ना कोई ना फुगल रो सा थे ना जब से हम नाय जरे सा थे ना उसे हम तक नाय जब ने वो को
0: होय होय
1: कई ना हैव दी सानी प्योर विजन जी की वारी हम खजे सा रे सानी बाई ता रे जा
0: या या सा पियो
1: कोई की सा का कोई नहीं सुन पुकत ना बिना तब दो वारी होय ने सुन था ना के मीना जो पुकत ना मो ओंग दे ता वे हो जे रे बसा
0: होय होय
1: ऐ ना जने ने सा नी पी वे विजन जी कोई की असो के मते गियंग की सब छि दो वाई ये को
0: होय होय
1: सारी हम लोग कोई टिक पीरो ब्रो टिक पी ब्रो
0: टिक चले
1: अदम जी सर सर वे ने जो हो जी अंगन दम तम जी थबक लांग ना वो ना बम तम द कोई की अंगन जब बम तम द यूं की थबक से सर ने पी या तो ना ना रे कंडा थबक तो वो से नंग देखो सर
0: होय होय
1: अब ये सर तो फिर हम जो है जो नहीं जो सर ने पी सी ना क्वाइट जी फॉर्म जो बत थबक जी सर थबक मत तो वो ले रहा जो ने पी जो फॉर्म वगैरह ले रहा आईजी पाजे थबक तो रो बने ना फम मगा लेबे नि पिते अमते याव जदे है गा सा
0: होय होय
1: नंग न बखन न जबंगा त नि अत दाइन हाइजेनिंग बरे सा नि पि नि पा खाइ देबिदा मा हम सु तो जदि ब थबक तो थार होइ न दि साक तो उसे थंग पि रख पया मा दि इरु जदे दि साक थंग पया रोइ दै ने बको होय
0: होय
1: अदे तने लाइ दु ग म क त ब या रोइ इसा जे म लोशन द ब या रोइ म दु थि न बि द बि द जुम म म पानि न ग दि नि पि नि पा ओ ब गे खै गे नि पा न जु सा से थोंग जला गा अइना अंगांग दो सिनरा मगा ताते थोंजेम बिरा गदी सोंगी इदिन जहराव जदै नेगा
0: होय होय
1: अदग माने इदि जरुर गा नंग नबा म चाक थि जब कायना तव बतारा गरी सानुम थिने बसे हेलो दा
0: माने माने यम चुम्बा असव वाफम नि आइ कोगी
1: अदन सारा पेना हाय जेनि नि जेनि पाछिन गे आ बमा तंद अखै निपी सिं दिगन पाछिन गे जों खान मरा कै नो मले बसा निपी सिं जि बे पेचक सा तो खुचे तुलु पग हगो ता हाय बेसे कदाजित की किमि खरे जगी वादने बको होय
0: होय
1: अदर नुपा सिंह जी चक्का तो वो खुद हम हो पा जाए ना बता लो सीने इन कल जी
0: याम ने पंजाबा वाफ़ मम्मा सुध थंबीरी में तो ऐ अतो पा म्यूज़िक सिंह दे ठेंग ना वो कांडे हंग जगे सुन सोई सोई देना
1: चाले जो पाकुम पामी नहीं
0: कोई ताबी दिवे मैं याम सिंह सीधा मधु की पाकुम दुमा मसा मसा की खंजन ने बगी खुदों जाबु दुमा बिजे रगे
1: ยามหังนิงบ่ก็ชะละบะนะหมุชะหังเยตะวะยะไซอะเกยามกันนซิลิงเอเกเบเยโลออยรุบะเกยามกุจิดิโฟนเมตะดิยาดะบะนีละตาไดตาละซาทีนะบะมะจะอมตะหังเยนิพีบะจิเมอะแองเกอร์นิพีเมยามเทงเลยเมยามวาดิซานเนหอยหอยยามจุมบะไอ้ก้อยกิฮอบซิกติอะฮ่วงบะซุมะยามะมะซุลายกว่าไอ้ทำจะเกหอยดิซินพัมซินุปากินุปีกิไฮบะถอยดุกปะ
0: हाना लेर मी बमो उंग मतो दुगदी अदुकि मति अहुंग बदि मयाम मति लेरे अदु मसि तम न तम न
1: दुम यम द लेरे कान दि मै छिकि बो इन त विलम त लगा थप गन छ तो कान दि मसा गि प्ले तो मसान फिंग दु उपु बे छु उ दि बे सा
0: होय होय अदु यम लुना यम लुना नुसि ने तोबि बगि दुम ओरम बसु याय न खन थोक मिन रे से
1: याय याय सा अदु दुम हंजे निंग बो दो छु दिगा
0: होय होय मानि
1: अदु सा यम न आइ जे थैंक यू सा
0: तागत सरी इसे मकता हंजरी
1: Hey, someday.
0: Okay.

0: हेलो, हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरमदा तरामनो उपचारी थोनाउजम तुम्बी है भी बको याम नुंगाई जे इंगेसी थोरम सिदा सरुग आबीरकपा करी करम बवाफम थंबी गनी थंबी हो
1: ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯩꯁꯦ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ,
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯕꯣꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯅꯦ ꯃꯃꯧ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯅ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯍꯥꯅ ꯌꯥ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯆꯦꯛꯐꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯐꯨꯕꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ,
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ, ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯆꯥ ꯏꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯐꯨꯕꯤ ꯆꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ꯫
0: ꯃꯥꯅꯤ, ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ, ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ,
1: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯦꯠꯂꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯃꯆꯟꯗ

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थरमदा तरामनो ओक्चरी।
1: हेलो सर, आई जन्म संतोषी देवी।
0: सनम छंत्रोक तगी बेबी हैबी बका
1: ओ
0: करिकरम बवाफम थंबीगनी थंबीगनसी।

धन्यवाद मनीषना। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं, आज मंगलवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है मेजर साहब। आवाज़ दिया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

दूसरा गाना पेश है गदर तू फिल्म से, आवाज दिया है उदित नारायण ने, शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है मिठुन ने। सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे भूल भुलैया 3 से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के युगल स्वरों में एक गीत। बोल समीर के हैं और संगीत से सजाया है प्रीतम ने। आइए अब सुनते हैं देव नेगी और परोमा दास गुप्ता के युगल स्वरों में एक गीत। फिल्म का नाम है गबर इज बैक।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं सिम्बा फिल्म से उस्ताद नुसरत फतेह अली खां, तनिष्क बागची और असीस कौर के आवाज़ों में एक गीत।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम महफिल प्रस्तुत करूंगी, वो भी कंगवा चैनल में। तो मेरा इंतजार

16 सबसे बड़ा धन थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तिंगमांग लोनना पुथोक्चब थौरमनी हौजिक ताबिरसी क्लास 8 हिंदी लेसन सबसे बड़ा धन

0: बेमा, अब तो आओ भी। चलो, अब थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। मुझे और भी कई काम करने हैं।
1: हाँ माँ, आती हूँ। मैं अपना गृह कार्य खत्म कर रही थी। अभी हो गया, आ गई।
0: किस विषय का गृह कार्य था?
1: गणित का था माँ, गणित का था। माँ, हमारे गणित के गुरुजी बहुत सख्त है।
0: ओ,
1: इसीलिए सोचा पहले गृह कार्य पूरा कर लूं, कहीं भूल न जाऊं।
0: तुम्हारी बात में एक छोटी सी गलती है। गुरुजी को गुशैल मत कहो। उनका सख्त होना तुम लोगों से नाराजगी नहीं है। वो तुम सबको अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए ऐसा करते हैं।
1: हाँ माँ, ये बात तो सही है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम सबके साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं।
0: यही तो एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। अच्छा, अब बातें बाद में करेंगे। बताओ, आज जो पाठ पढ़ना है उसका शीर्षक क्या है?
1: सबसे बड़ा धन।
0: ओ, बहुत सुंदर शीर्षक है।
1: इसका क्या अर्थ है, अब बताइए ना।
0: सबसे बड़ा धन का अर्थ है ज्ञान और शिक्षा या विद्या। हमारे पूर्वजों में एक कहावत प्रचलित थी कि चोर दुनिया की हर वस्तु चुरा सकता है, लेकिन किसी का ज्ञान, बुद्धि और विद्या कभी नहीं चुरा सकता। अब समझ गई ना?
1: जी माँ, अब समझ गई। आगे बताइए।
0: शिक्षा की पहली सीढ़ी है अक्षरों को पहचानना और उन्हें लिखना सीखना। उसके बाद पढ़ना लिखना और फिर विभिन्न विषयों का गहराई से अध्ययन करना। यही शिक्षा प्राप्त करने की मुख्य सीढ़ियां होती है। आज हम प्राचीन काल में नहीं बल्कि आधुनिक युग में जी रहे हैं। विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बहुत सहायता की।
1: विज्ञान की सहायता से अनेक नई नई खोजें हुई है और मनुष्य प्रकृति के अनेक रहस्यों को समझने में सफल हुए हैं।
0: हाँ,
1: अब हम भी पहले जमाने के बच्चों की तरह नहीं रहे।
0: ये तो तुमने बहुत सही कहा। तुमसे बातों में तो अब कोई जीत नहीं सकता। बहुत समझदार और सयानी हो गई हो।
1: वो तो हूँ।
0: तुम वाकई आज की तकनीकी युग की बच्ची हो।
1: माँ, क्या तुम मेरी बुराई कर रहे हो या प्रशंसा?
0: अरे, इतनी प्यारी बच्ची और इतनी प्यारी बेटी की मैं भला बुराई कैसे कर सकती हूँ? ये सब बदलाव समय के साथ आए हैं, इसलिए तुम भी इस विकसित और आधुनिक युग की बच्ची हो। मेरा यही मतलब था।
1: ओ, ये तो सच है। आपको तो फोन चलाना भी नहीं आता। पिताजी का फोन हाथ में लेते समय भी आप कहती हो कि मुझे तो चलाना नहीं आता। लेकिन मुझे सब कुछ आता है। शायद इसी कारण पिताजी ने आपके लिए एक साधारण मोबाइल खरीदा। लेकिन माँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाती है।
0: ऐसा क्या? सही कह रही हो मेरी बच्ची। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए अच्छी तरह पढ़ा पाती हूँ। फोन चलाना भी अगर सीख लूँ तो जरूर आ जाएगा। मैं सोचती

0: की चीज खरीद कर क्या करूंगी, इसलिए मैंने नहीं सीखा। मैं चाहती थी कि पैसे का सही उपयोग तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हो। और तुम्हारी माँ कोई सरकारी नौकरी भी नहीं करती, पिताजी की तनख्वाह से ही घर चल रहा है। ठीक है, ये बात यहीं छोड़ते हैं, अब पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं।
1: हाँ माँ, आगे बताइए।
0: चलो, आज के युग में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। इसकी सहायता से मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बनाने वाली अनेक वस्तुओं का निर्माण हुआ है। जैसे मोबाइल फोन के माध्यम से लोग एक दूसरे से अपने सुख दुख बांट सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आज मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। हमारा समाज लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। जब तक मनुष्य इस धरती पर रहेगा, तब तक नए नए आविष्कार और निर्माण करता रहेगा। सभी जीवों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है और अपनी बुद्धि के बल पर वह अनेक काम कर सकता है।
1: माँ, मैंने एक दिन पिताजी की बात सुनी।
0: अरे, तुम तो पिताजी से रोज बात करती हो, कौन सी बात सुनी तुमने?
1: मैंने पिताजी से सुना कि आपने 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था, क्या ये सच है?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर क्या हुआ? बस वैसे ही सीखा था।
1: मैं तो आज तक माँ आपको एक साधारण सी कपड़े बुनने वाली स्त्री समझती थी। आज मुझे पता चला कि आप तो एक शिक्षित और साहसी मिट्टी स्त्री हो। आप जो कपड़े बुनते हो वे बहुत महंगे होते हैं, शादी विवाह में पहने जाते हैं।
0: ये बात तुम्हें किसने बताया?
1: हमारे घर इतने सारे लोग चादरें खरीदने के लिए आते हैं, और माँ आप कपड़े बुनने के लिए 10 कारीगरों को भी काम पे लगाती हो ना।
0: हाँ?
1: पिताजी कहते हैं कि उनसे ज्यादा कमाई तो आप ही करती हो।
0: तुम तो चुपचाप सब सुन रही थी।
1: हाँ?
0: चलो अब पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। मनुष्य ने प्रकृति की रहस्यों को समझकर कई लाभदायक चीजों का आविष्कार किया है। इसी के कारण हमारा समाज लगातार विकास करता आ रहा है। जहाँ तक संभव हो हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना आना चाहिए।
1: जी माँ,
0: पढ़ाई लिखाई और समाज के विकास का गहरा संबंध है, इसलिए साक्षर बनना बहुत जरूरी है। अब यहाँ तुम्हारे पाठ से संबंधित बातें आ गई है।
1: हाँ माँ, आप जो बता रहे हैं मैं भी उससे सहमत हूँ। निरक्षर लोगों का समाज में उतना आदर नहीं होता। हमारे मोहल्ले में भी कई लड़के हैं जो स्कूल जाने के बजाय इधर उधर घूमते रहते हैं। बड़े लोग जब उन्हें देखते हैं तो डांटते हैं और कहते हैं पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, बस गलियों में घूमते रहते और नशा करते हो। यहाँ से हटो। मैं उनकी बातें सुनकर और उन्हें देखकर मुझे उनके लिए शर्मिंदगी महसूस होती है।
0: हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। शिक्षित लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते। आज हमारा देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। जिनके पास अधिक धन दौलत नहीं होती, वह अभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। पहले के समय में लोग शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है।
1: माँ, गांव में रहने वाले बहुत से लोग आज भी निरक्षर हैं। उनके माता पिता पढ़ाई से ज्यादा खेती बाड़ी पर ध्यान देते हैं।
0: इसलिए अशिक्षित महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी कम होती थी। कौन सी चीजें खाने से शरीर स्वस्थ रहता है ये भी वह नहीं जानती थी। इसी कारण सरकार ने गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले और लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। अब धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। आजकल लोग पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ रहते हैं। उनकी उम्र भले ही बढ़ जाए, लेकिन वे देखने में जवान लगते हैं।
1: माँ, मैं भी ऐसे ही एक व्यक्ति को जानती हूँ। हमारे पड़ोस के पुप्पू चाउबा हमारे बाबा से बड़े हैं ना, फिर भी वे बाल रंगते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और कार भी चलाते हैं।
0: हाँ बेमा, उन्हें तो पेंशन मिले भी काफी समय हो गया है, लेकिन वे आज भी बहुत जवान दिखते हैं। पहले के समय में लोग कम उम्र में ही बुढ़े दिखने लगते थे, लेकिन आज लोग पौष्टिक भोजन करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। इसी कारण वे अधिक समय तक स्वस्थ और जवान दिखते हैं। ये भी शिक्षा का एक बड़ा लाभ है। खेती बाड़ी का काम ज्यादातर गांव के लोग करते हैं, इसीलिए किसानों के लिए अधिक उपज देने वाली फसलों, सही समय पर खाद डालने और फसलों को कीटों से बचाने जैसी बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। यदि किसान अशिक्षित होंगे तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वयं शिक्षित ना भी हो तो परिवार में कम से कम एक शिक्षित सदस्य का होना बहुत जरूरी होता है। वास्तव में जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा आवश्यक है। क्या हुआ?
1: माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तक पढ़ाई करते करते थकने का बहाना बनाकर आराम कर लेती थी, लेकिन आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए हमेशा कुछ अच्छा करता है।
0: बिल्कुल सही।
1: हाँ माँ,
0: आज हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। स्कूलों और कॉलेजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी कारण डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और प्रोफेसर जैसे अनेक योग्य लोग तैयार हो रहे हैं। आज का समय कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का युग है। शिक्षा और विज्ञान की बदौलत हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है और धीरे धीरे विकसित देशों की श्रेणी में अपनी जगह बना रहा है।
1: माँ, अनपढ़ या अशिक्षित होने से क्या इंसान समझदारी से वंचित हो जाता है?
0: हाँ बेमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अशिक्षित होने से व्यक्ति का ज्ञान सीमित रह जाता है। अशिक्षा का अर्थ ही अज्ञान होता है और अज्ञान का अंधकार सबसे भयानक होता है। इसलिए ऐसे लोग अक्सर सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। वे बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इस तरह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे लोग अनजाने में समाज की प्रगति में बाधा बन जाते हैं। साक्षरता अज्ञान को दूर करने की कुंजी है। जो साक्षर होता है वह आसानी से कई विषयों की जानकारी प्राप्त कर लेता है और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है।
1: तो माँ, शिक्षित व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकता है और कठिनाइयों का सामना भी कर सकता है?
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान मिलते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। इसलिए हम सबको साक्षर बनना चाहिए।
1: माँ, अज्ञानता ऐसे लोगों को भी कहते हैं जो यह नहीं समझ पाते कि उनकी बातों या कामों से दूसरों को अच्छा लगेगा या बुरा। सही है ना? माँ, अज्ञानता ऐसे लोगों को भी कहते हैं जो यह नहीं समझ पाते कि उनकी बातों या कामों से दूसरों को अच्छा लगेगा या बुरा, सही है ना?
0: हाँ, ऐसे लोग कभी-कभी अनजाने में परेशानी भी पैदा कर देते हैं।
1: हाँ,
0: इसलिए अच्छे पड़ोसी का होना बहुत जरूरी होता है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी समस्या को झगड़े से नहीं, बल्कि बातचीत और समझदारी से सुलझाना चाहिए। पड़ोसियों के साथ प्रेम और मिलजुल कर रहना चाहिए। जब भी अपने काम से फुर्सत मिले, एक दूसरे से मिलना जुलना, सुख दुख बांटना और अपने घर परिवार की बातें करनी चाहिए। इससे झगड़े कम होते हैं और एक दूसरे की मदद करने की भावना बढ़ती है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि अच्छे पड़ोसियों के साथ रहने से जीवन में शांति बनी रहती है।
1: देखो माँ, पिताजी आ गए।
0: हाँ हाँ, अरे क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी तो पूरे भीग गए हैं शायद।
1: हाँ।
2: बेमक की माँ।
0: जी।
2: पहले मैं कपड़े बदल लेता हूँ। जरा अंदर से मेरे कपड़े निकाल दो, फिर आराम से बात करते हैं।
0: हाँ हाँ, मैं निकालती हूँ। थोड़ा रुकिए।
1: पिताजी, आप तो पूरे भीग गए। क्या पानी में गिर गए थे?
2: नहीं नहीं।
1: तो फिर कैसे भीग गए? किसी ने आप पर पानी फेंका क्या?
2: नहीं, किसी ने भी पानी नहीं फेंका।
0: लीजिए, ये आपके कपड़े हैं। ये गीले कपड़े इस बाल्टी में डाल दीजिए, मैं धो दूंगी। लेकिन हुआ क्या था? हम तो हैरान हो गए।
2: अरे तुम लोग भी ना, सांस लेने का भी मौका नहीं देते। एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हो। मैं सब बताता हूँ। पहले इस मोरे पर बैठने दो, फिर आराम से पूरी बात सुनाता हूँ। हुआ यूं कि जब मैं यहाँ से निकला तो रास्ते में मेरा एक पुराना और बहुत प्यारा दोस्त मिल गया। उसने पड़ोस के तोमचो के बेटे सनाजावो के बारे में पूछा। मैंने उससे पूछा, अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? तब उसने बताया कि पड़ोस के तातोमचो का बेटा MCS सेलेक्ट हो गया है
0: और
2: पोरोमपाट में SDO के पद पर नियुक्त हुआ है।
0: फिर
2: उसने कहा, चलो एक बार उसे मिल आते हैं। उसे एक परेशानी हो गई। उसके बड़े भाई के बच्चों ने घर के फाटक से आने जाने में रुकावट डालनी शुरू कर दी है।
0: और
2: पहले भी उसे ऑफिस में मिल चुके थे। मेरे दोस्त ही सही है, इसलिए उसके पक्ष में ऑर्डर भी निकलने वाला है। इसी खुशी में मिलने आया था।
0: आजकल तो बहुत बुरे लोग हो गए हैं। किसी के कान भरने से हुआ होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो बेमकी माँ। उसके बड़े भाई की छोटी बहू की ही यह साजिश थी। वे लोग फाटक के पास नशे की चीजों का भी व्यापार करते थे।
0: ऐसा?
2: हाँ, अब देखना क्या होता है। मेरे दोस्त को बहुत गुस्सा आ गया है। उसने तय कर लिया कि अपने गली की तरफ एक अलग दीवार बनवा देगा। यह सब उनकी माँ के अशिक्षित होने का भी एक परिणाम है।
1: पिताजी, आपकी कहानी तो बहुत रोचक है, लेकिन आप भीगे कैसे? ये तो आपने अभी तक नहीं बताया।
2: कहानी मेरे भीगने से ही संबंधित है। अब मेरे भीगने का समय आ गया।
1: और क्या?
2: फिर हम दोनों उसके घर चले गए। वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ कर रहे थे। हम भी हैरान हो गए कि आखिर हुआ क्या है। फिर पता चला कि उसी SDO के घर में आग लग गई थी।
1: अरे आग!
2: हाँ, पूरा मोहल्ला मिलकर आग बुझाने में लगा हुआ था। हम दोनों भी तुरंत उसकी मदद करने के लिए गए। इसी दौरान मैं भी पूरा भीग गया, इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए हैं।
0: इसीलिए
1: पिताजी, ये तो बहुत दुख की बात है। अब वे लोग कहाँ रहेंगे?

0: उनका पक्का मकान तो लगभग तैयार है, बस रंगाई और दरवाजे खिड़कियां लगनी बाकी है। आग उस अस्थाई घर में लगी थी जो उन्होंने कुछ दिनों के लिए बनाया था। तब मोहल्ले के सभी लोग ने मिलकर कहा, जब तक नया घर पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम सब मिलकर इनके लिए एक छोटा सा घर बना देते हैं। हम भी उनसे मिले और अपनी तरफ से उनकी मदद की। उस लड़के ने भी यहाँ सब देखा और वह बहुत खुश हुआ।
1: बाप रे, तुम्हारी ये कहानी तो बेमा के पाठ से भी मिलती जुलती लग रही है।
0: कौन सा पाठ? मैं भी तो सुनूं।
2: पिताजी, पाठ के नाम है सबसे बड़ा धन। मैं माँ के साथ वही पाठ पढ़ रही थी।
0: बिल्कुल सही। घर जलने पर घर और उसमें रखा कुछ सामान जरूर जल सकता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि कभी नहीं जलते।
2: वही
0: इस बात को हमारे बुजुर्ग भी पुराने समय से बताते आए हैं। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने की भी कोई सीमा नहीं होती, इसलिए हमें जो भी ज्ञान मिलता है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। किसी भी समाज के विकास में ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना?
2: जी पिताजी। पिताजी, उनके घर में आग लगने पर मोहल्ले के पूरे लोग दुखी हुए और सपने मिलकर उनकी मदद की। ये उनकी प्रति प्रेम और अपनापन ही तो है ना?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। सरकारी नौकरी मिलने से पहले उन्होंने मोहल्ले के कई बच्चों को पढ़ाया लिखाया था।
2: हाँ।
0: मोहल्ले के क्लब की भी बहुत मदद की थी। वह सच में बहुत अच्छे इंसान थे। लोग कहते हैं कि उनके रहने से पूरे मोहल्ले का विकास हुआ है।
1: काश हमारा भी उनके जैसा एक बच्चा होता।
2: माँ, मैं हूँ ना, मैं ही उनके जैसे बनूंगी।
0: मेरी सासी बेटी, तुम्हारी यही सोच तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: तथास्तु तथास्तु, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देती हूँ।
2: धन्यवाद माँ।
1: अच्छा, आज के लिए इतना ही। चलो, कल फिर पढ़ाई करेंगे।
2: हाँ माँ।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯠꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न सबसे बड़ा धन क्या है फिर से सुनिए सबसे बड़ा धन क्या है
0: अचुंब पाखुम पीबिरकप सिंगि मनुंगदगी लॉटरी तौरगा खनगतलब महिरोय सिंगदा अहानब मना ओइना लुपा चमंगा अनिसुब अमसुंग अहुमसुब तारब सिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोंना पाखुम पीबिरकपदा इसागि मिंग क्लास अमसुंग स्कूल की ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिक चुमने इबिरगा एसएमएस की खुथांगदा पिजरीब नंबर 9378120495 ता पाखुम पिबिरओ पाखुम पिबिरकप मतमदा एपिसोड नंबर इबिरकप काउबिगनु प्राइज विनर दी नसिदगी चैउल अमगी मतुंगदा लाउथोक्सगनी ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯡꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 42ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯦꯕꯤꯌꯥ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯅꯥꯁꯝ ꯁꯥꯏꯑꯣꯟꯕ ꯖꯤ ꯇꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁꯤꯕꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡ

समीक्षक खुद गेनी सुबदा इरांग संदगे रणवीर थोनाम दी पुष्पारानी के पुनब खोंजलदा विक्टोरिया आरके ने सरेंगबा आरके बीरेंद्र जी ने सरेंग विषय सिमु खुदल तमजरी मैं पुन तामिन सिंह

0: भनरम गने हाय बखाले मतम खोदी मक्ता मिठोई मिहेन नबा कन्ना भनरमो अदुगु आइन मिपायरी बदी युम पान बगी असादा नुशीनों युवाखलदा मतम माहन बनाई ने भी ओरीबा इरम द मधुगी ले माई तनी को नहांगा ले फोरी बदो खलु बदा आई दी याम लांग तक नहीं मुहिनी इमा पाबुंग अनी नाई तोम साथ भी मोमोम लोई ओई बते नतना इरम दम गिन पीजा लगत गिसु मिथोई मिहेन या साना थौना ओरी भी मतम खुदी मुक्ता नहाक ती माई पाक पी दे ओयो अदुगु मिओई बगी लु तोंग साबा हक्सांग पोलांग नंगम दुना पुंग अरे पबुदी ना थई बिरम गनु को नु सीबी ना की अविनाश थोंगाम
1: मसी सु अमकन सिटी धाक लेबा इमा अकी हम दई कारो ने पुबिरो इमा
2: ไอ้นี่ไรนี่มาหมดทีเดียวมาชินไปสินะตอยสิโอ้ยมาทําชิวนะสิหาละก็มาน่ะมึงก็ให้ตาหนูไม่ซักกระจานะครับก็เฮ้ยไอ้นุ่มกูตาหน่อยไอ้นี่กะนุ่มกูตาหังกินน่ะกะรีงะชิชิบูมุ่ยนี่ตุปกเลสลาปรอไอ้คําว่าอุดเรบ่เอ้ยไคนูหายสิบ่มาทําไอ้นุ่ยนี่ละไคมันตุสุเลยมินะละกะไงขอนุ่ยนี่ที่ยําละซานะได้เนี่ยซานะบ่ซานะเดบกี้ว่านะติมาดิมาตมเนซะปิชําละปามบ่โอ้ไอ้นี่ไรมาหูจะพารามิตาตาบ่ให้ตาเรอะดุมินะปังกะช
3: 라이빅 라이크라수 우리 가수로는 민야 틸로니가 아직 하여 오버니
2: 오 아도 민야바 아이고 너 비행 오네 아이시부 무사칸드라
3: 솜버
2: 호이
3: 아이부 하이패티 오기금 니다 우리도 보
2: 그럼 문이 게노나
3: 너희 산스키 사드라지 약한건 니다
2: 오
3: 자리 우기게 니인다 틸로기
2: 와이 와이 플리즈
3: 가리
2: 민야바 Nangi nama nabi mihni do. Kali ini aino koi kairi ni ne. Asa ekwene si dibe ma tamma akan tu sini sani kanga ba.
3: Mali ne.
2: Ado, haujik di exam sulu edo ni na siyele sahi ke taune. Ado na tra di ma thasi amti na sadoro ba. Masak pasa mini piko ibe si uwa zani ko.
3: Hoi da, sensei mulu pare da. Hajin poki tan pao wadi kato na saa pang lani dira.
2: Tan dina di.
3: Kari.
2: Gula, aluso, barfi asa. Wadaw, wadaw, hidir lagi sini wadi.
3: Aduh,
2: nang sunangin nama nabi ni kerat hunu binsel okey no. Ibe mau jeng matam sini kerangan nalu hong hong, esen apa peram ne?
3: Kali.
2: Tharu ar walak itu kui dumin he.
3: Kali no ne, awal beri ne hai siwa.
2: Siang begini wani, la tu ngali rum ne ba. Hai ne boleh ina hani sini. Pakistan ni misal kapsul aku dah ekor swai oni gay ne, hai ne boleh ina.
3: Woi deh cinta mana paraya dah? Mahju sining mana muktor belu ayra bani. Mau nari bunuh pasin cie.
2: Kali.
3: Masak ining deh mama ining deh mata.
2: Mina pa.
3: Semua di nanti kau hari sih.
2: Mina pa. Aidi mohini bulung juga kena yang tahu isi nenek sih jawabnya. Aduh. Makoi ya halam sih nanti. Aisi yang pina lumba tahu rasa ni. Marum di. Ina kira kun memasani sanggup apa ya? Semua tega ni be. Mai mai nong pa do. Aini nengu mohon untuk selalu bersih di pura neng thong masal apa sah menurut sih tahu jani kanga ba.
4: Pacemaker Artist Association gi lila kang buna sana ba sumang lila naitom satpi lila sigi ani suba tangkag tabide hojik oinam saile kuman chana sakpa lai chul seima sandok sari sairing ba nandalal roy

थोरम से नुक्तु ने तहन जरिबे छे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देगिनी होजी लांथोक चरी गुड इवनिंग मणिपुर दा दोमना एसएमएस एमडी व्हाट्सएप मैसेंजर की खुथांग दा खंबिर क दबा ताबिनिंग बा इसै सिंह थमजरीबा कोई की मोबाइल नंबर 9863102016 नंबर सिदा एसएमएस नत्रग व्हाट्सएप मैसेंजर की खुथांग दा अदम खदा बिबे सही खंबिर प यारगनी

हन्जिन फिल्म से दिखे मुख ताबी जोन एलांगबम की खोजेल केपी दास ने सैरिंग राहुल ब्लू ने सैरंग खनबीरली मरुप सिंह लाइनजम साबल दिगी सुरन जोय उलोक दिगी थाउनाउजम शोभा चंद्रा

इरम ले महक तुमक फिल्म सिदेगी मुग लखो चरी दिनेश की खोंजेल दा सचिंद्रा टीएसना सेरिंग बगीत अमली तोमन सेरांग बैसे खनबिर गिबा मरुपना के शामथोंग इरम पुखरि मापाल देगी मोयरांग थेम खुमै टोन अमली मरुप सिंगनी

0: Isaya sigilu ni na ngasi gyo na di good evening Manipur lantok saba matanga sri lusin jare tabi di bisi akazban infal gi fm sangai channel ni haji nu midangi pung mapal tare manipuri da pau tabi resi
1: आकाशवाणी इंफाल गांगोम किरण पाव पाजरी नगाम सुंकुकी फुरुप सिंगना नेशनल हाईवे टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंग आयत अफन लेतन चलन बगीदमक मुख्यमंत्री युमनाम ख्यामसा न थागत पोंगदोक्रे इंफाल गे हिंग खोंगबाल दंगा सिपांग तोपा निफु मंगा सुबा हॉकर्स दे गे थोरम दो सरुक यारदुना मुख्यमंत्री नहाई कांगलुप अनिमक की मियाम ना वाखल तामिना दुना मतेंग पांग नरक पसी राज्य से द शांति एम सुंगतंग दुलाई ताव पुरुक नब गिलम बिदा सिंथा निगाई ओयरव टांकक अमनी सेनापति जिला के तफौ विलेज द ngarang thoki ba pamda ba thauduk singi matang da palladuna mukhyamantri na hai MLA sing amasung district authorities sing na kang anima kilu sing ba singawari sanaduna national highway da gari sing satpada yet afan thonda na ba thawak sing lokalai mukhyamantri yumnam khyamsan sing asin midang waram delhi ge da mak imphal thadokre sri khyamsan na delhi da hayang kendra ge lu sing ba kaya ga unaduna wari sanagani मुख्यमंत्री ने केंद्र के लोसिंग बस सिंगों ने तो ना राज्य से के वही पर तोंगान तोंगान वो आपम के आगे मत आंगदा वारी शान रखने हायरी सोरसानपुर जिला दा डेंगू ने है ना चिंगनबर लायोंग टाइफाइड लोक थुंबा मानबर लाई ना सिंग मसुंग चिल्ले नाबक लायोंग सिंग अंगांग सिंग द संदर्भ के बाद उगे यंग लगा जिला से के डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार ने सभापति वही तो ना मिफम मामा पांग ठोकरे मिफम मददा हेल्थ मसुंग एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिंग सर किया की मिफम संदोरकली लाइना लायों सिंह निंथी थीजन थेना वाफम क्या खनकी द हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ श्री जगन्नाथ कल्चर इन द नॉर्थ ईस्ट विथ स्पेशल रिफरेंस टू मणिपुर हैबसीदी चथगदब नेशनल सेमिनार मसीदगी राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय नंबोल हौक्रे हौदपे थोरम सरुक यारदुना केंद्र की हान शिक्षा मपान थोरम मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन सिंह नहाई मणिपुर मैदिंग सराय रोंग पानुम जगन्नाथ लातुन खुरुम्बगे थबक असी होरकी मधुगी मतुंगदा महाराज भगतचंद्रना कोनुंग कांग चिंगबगे थोरम होदोखी महाराज सुरसान गे हक्तक्ता कांग चिंगबसी मणिपुर गे तंबा की मफम पुनमक्त संदोखी मधुगी तुंगदा आसाम त्रिपुरा सिलेट मदि म्यानमार सिंगबा मफम सिंग खुंदारी मणिपुरी सिंग लाइ मफम सिंगदा कांग चिंगबगे थोरम सिंग पांगथोकनरकी थरमद द ICSR न्यू दिल्ली की प्रोफेसर हरिहर पांडा डीएम यूनिवर्सिटी इम्फाल की वाइस चांसलर प्रोफेसर डब्ल्यू चांदबाबू सिंह मसुंग उड़िया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य चिंग सरुकिया की हयेंग अरुबनमिता ऑनलाइन सेशन नोयना टेक्निकल सेशन मरी लेगनी अमसुंग कला संस्कृति की थरम कयासु पांगथोकनी हाई मणिपुर मिकोक थेद्रिंगाई दा NRC तौबीनब दाबी तक्षिंदुना शिवसेना मणिपुर प्रदेश ना केंद्र की गृहमंत्री मणिपुर की राज्यपाल मसु मुख्यमंत्री दा वाकत चरोल सिंह पिशन क्रे हैरी मिकोक थेद्रिंगाई दा मितोप खंद ओ हाइब दाबी तक्षिंदुना जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD ना संगसिलिब खोंगजों बु सवतुनंगसी थौबाल अथोपम कैथेल दा वाकत मिफम म पांगतोक्रे अथोपम मैरा पाइबी अपुनब लुपमदि अथोपम अपुनब क्लब थौबाल पुनः सिंधु पांगतोप वाकत मिफम नो NRC नो सेंसस हाइब प्ले कार्ड सिंह पाई कक्षिंग जिला की मनुंग चन लेब खा मणिपुर कॉलेज थास की कुंतरेत नेशनल स्पोर्ट्स डे मपुंग फान पांगतोकनब सेम सारे कॉलेज असगी NSS यूनिट सिंधु पालन थोरम से पांगतोकदबन हेरी असम राइफल्स नंगा से सोरासानपुर जिला की तोहान तोहान वफम सिंह देंगी लेना दगी आखोनब कांग लेहदनब मैखू काप्थोप की थोरम सिंह पाकथना पांगथोक्रे IGAR साउथ की पाउन हाई मफम की मियाबू देंगी लेना दगी कन्नब की वाखलों मैखू काप्थोप की थोरंग पाइखलपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल चाइना की मपाल थोरम मंत्री वांगी गंगा बैजिंग भारत चाइनागम खी वाथों लेबाक अनी मरी हेन फगत वारी सानक्रे चाइना की राष्ट्रपति शी जिनपिंग मथं थाद ब्रिक्स मिफम यौनबीदमक न्यू दिल्ली लाखदरी मांगोना मिफम पांगथोकीबनी श्री डोभाल श्री वांग मकोई अनीमक गमखई वाथों की वारोसी पुरक्नब लेबाक अनीमक की अखनब मिहुत सिंह ओरीबनी kilometer lising ahum samari marpuni pan sangba bharat chainangam khegi sayet nari wapham sing waroshin purak na bamakoyani bu gumjali singani ahum da akhan na bamihut sing oina hapki bani mapanthor mantri dr s joy shankar na russia ga panthor mantri sergey lavrov ka moscow aduna duna lebak ani gi mari hena fagna na bamasung malem ga iwapham kayagi matang da wari shanakrei paulo jere

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम हर सिंगार में। दो नजरें मिलती हैं, दिल धड़कता है, मोहब्बत हो जाती है, एकदम सेट फॉर्मूला। पर कभी

मोहब्बत हो उसकी हर अदा पे प्यार आता है, नजरें झुके तो खास और जो उठें तो बात। अब मैं इससे अच्छा क्या ही कह सकती हूँ जो ये अगला गीत कहने वाला है। ये अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म कंगन से महेंद्र कपूर और उषा खन्ना जी की आवाज़ में है ये गीत, सुनिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट

0: शनिवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये सफर है हर सिंगार का जिसमें आज आपकी हम सफर में हूँ माधुरी और अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म अंगूर से आशा जी की आवाज में है।

इश्क में बावरा हो जाना तो आम सी बात है और जब दिल की चोरी की बात हो तो जरा गौर फरमाइए इन पंक्तियों को। चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। दहर में खाक बसर ही रहा, उम्र को इस तौर बसर कर गया। और अब दिल ही नहीं है मंजिले सीना में, यहां से बेचारा वो सफर कर गया। कि जब नैनों से नैन मिलते हैं और चोरी की बात होती है।

ये प्यारा सा गीत था फिल्म धरती कहे पुकार के से मुकेश और लता जी की आवाजों में। और आज दिल्ली एनसीआर का मौसम बड़ा भीगा भीगा है, तो कुछ बादलों की भी बात हो जाए, बारिश की भी बात हो जाए। और एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर आपको बुरा ना लगे। और एक बड़ी अच्छी चंद लाइनें हैं कि बरस रही थी बारिश बाहर और वो भीग रहा था मुझमें, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। और मोहब्बत में जो बारिश होती है और भीगना है और बादल है, उसको कैसे जो है डिस्क्राइब करते हैं, वो कुछ इस तरह इस अंदाज में है कि इस गीत को सुनकर आपको एहसास हो जाएगा। और ये गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म मेरा साया से लता जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुँच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा जी। एसपी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex jumps nearly 300 points, Nifty settles above 24,300. Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त का रुख, सेंसेक्स में लगभग 300 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,300 से ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में यूपीआई के बढ़ते उपयोग की

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 287 अंक यानी 0.37% बढ़कर 77,656 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 116 अंक यानी 0.48% चढ़कर 24,335 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.5% की तेजी आई, जबकि स्मॉल कैप में मामूली बदलाव से 0.1% की सुस्ती देखी गई. इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले और दोनों सूचकांक ज्यादातर समय दबाव में रहे. हालांकि कारोबार के आखिरी आधे घंटे में बाजार में जबरदस्त रिकवरी हुई और बढ़त के साथ बंद हुए. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद सूचकांक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए. बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा, जिसका मुख्य कारण क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू होने के बाद निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शन की पहली मंथली एक्सपायरी रही.
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex gained 287 points or 0.37% to close at 77,656. The Nifty advanced 116 points or 0.48% to settle at 24,335. In the broader market of the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.5%, while the small-cap 100 index dipped 0.1%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions, with both benchmark indices remaining under pressure for most of the session. However, in the final half an hour of trade, the market staged a sharp recovery and turned into positive territory. Following the closing auction session, CAS, the indices ended the day with healthy gains. Volatility remained elevated, largely due to the first Nifty futures and options monthly expiry since the implementation of the CAS.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो 2%, अडानी पोर्ट्स 1.2% और इन्फोसिस तथा ट्रेंड 1.1% ऊपर आ गए. इसके उलट एटर्नल 0.8%, एचसीएल टेक 0.7% और पावर ग्रिड 0.5% लुढ़क गए.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 25 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड अपवर्ड. Among the top gainers, telecommunications rose 1.4%, hospitals increased 1.3%, and PSU Bank added 0.8%. In contrast, mid-small private banks lost 0.25%, private banks index dropped 0.1%, and insurance dipped marginally. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,330 companies declined, 2,007 advanced and 188 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ. एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: एसपी, आज के कारोबार में शेयर बाजार ने शुरुआती कमजोरी दिखाई, लेकिन इसके बाद शानदार रिकवरी हुई और सकारात्मक रुख के साथ क्लोजिंग हुई मार्केट की. तो आपके आकलन में इस रिकवरी के पीछे सबसे बड़े घरेलू और वैश्विक कारण क्या रहे, और इससे बाजार में मजबूत खरीदारी की वापसी हम मान सकते हैं या अभी लग रहा है कि कुछ और स्थितियां हैं?
2: देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है, और सेकंड जो आज की खरीदारी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं. एक तो क्रूड के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं, बहुत ही एस्केलेशन जो हम देख रहे थे तो शायद उसमें कुछ ऐसा पॉज यहां पे आए, तो जिससे एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो थी वो भी थोड़ा कम हो जाती हैं जब क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आती है. और दूसरा जो हमने देखा, जो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उन्होंने काफी अच्छे से सपोर्ट किया है. पीछे के कुछ सेशन जो है हमारे काफी स्ट्रांग रहे हैं, बीच में भले ही कुछ वॉलेटिलिटी तो जरूर रही है, लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट है फंडामेंटल सपोर्ट के अलावा जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं कॉर्पोरेट अर्निंग को लेके, और दूसरा जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर जो हमने काफी फोकस किया और हमारे एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं 13% से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है
1: जी.
2: तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो मार्केट की मजबूती है वो काफी अच्छी है पिछले कुछ महीनों से. भले ही वॉलेटिलिटी रहती है, जब भी कोई ग्लोबल डेवलपमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है. अब कल कोई और कुछ नेगेटिव का कोई न्यूज आ जाए तो मार्केट में फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है. लेकिन ओवरऑल जब भी मार्केट में कुछ भी ग्लोबली कुछ पॉजिटिव होता है तो मार्केट स्ट्रांगली रिबाउंड करती है. ये एक इंडिया की मार्केट की एक स्ट्रेंथ है जो जहां से हमें पता चलता है कि डोमेस्टिकली वी आर वेरी स्ट्रांग बट चैलेंजेस आर फ्रॉम दी ग्लोबल साइड.
1: इसमें आपको ये लगता है कि निवेशकों का एक ट्रेंड बदल रहा है, उनके सेंटिमेंट्स भी काफी तेजी से बदलते हैं इसके साथ में?
2: बिल्कुल. उसमें क्या है कि मार्केट का अगर हम बिहेवियर देखें पीछे के 4-5 महीनों का, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ईरान में और यूएस में, तो मार्केट में कोई ऐसी करेक्शन जो डीप करेक्शन जाके जहां पे मार्केट वहीं पे सेटल हो जाए ऐसा नहीं देखा गया. मार्केट ने रिकवर किया है. मार्केट जब भी उसको मौका मिला तो मार्केट ने स्ट्रांगली रिकवर किया. तो कुल मिला के जो गिरावट है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि हम देखिए
1: ओवरऑल
2: जो ओवरऑल निफ्टी था वो 25,000 से ऊपर था. तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी 24,000 के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है, प्लस माइनस 23,500 से 25 तक भी चला जाता है. तो ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में कोई ऐसी डेसिलरेशन आई हो और मार्केट जाके 22,000 पे सेटल हो जाए और वहां से फिर रिकवरी का नाम ही ना ले. तो वहां पे हम देखते हैं कि बहुत ही कुछ नेगेटिव है हमारी अर्थव्यवस्था में, कुछ नेगेटिव है, हमें हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है. लेकिन अभी मार्केट भले ही कोई करेक्शन आती है तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली रिबाउंड भी करती है. तो जो इसका एक दायरा है जो जैसे मैंने बताया 23,500 से लेके 25,000 के बीच में ये पिछले 5-6 महीने से उधर ही अपना एक रेंज बाउंड.
0: सो डॉक्टर शर्मा, विच डोमेस्टिक ट्रिगर्स मैटर्ड द मोस्ट टुडे, द एफआईआई और डीआईआई फ्लोज और द रुपी स्टेबिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज?
2: देखिए इसमें लेख साहब मेनी डेवलपमेंट्स लाइक अवर फर्स्टली द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस लाइक द क्रूड इज नाउ डिसेलरेटिंग, नॉट गोइंग सिग्निफिकेंटली अप. एंड सेकंड इज द फंडामेंटल फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड फ्रॉम द आईआईपी नंबर्स. सो रीसेंट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग. एंड थर्डली एज आई सेड द कॉरपोरेट अर्निंग्स आर वेरी सपोर्टिव. एंड फोर्थली सम स्टेबिलिटी in the FII inflows also, they are the net buyers and DII is also investing strongly and their investment is higher than the FIIs. So all these factors are supporting the market because market strength is showing a great resilience despite many headwinds at the global level like various negative news from Iran and US side regarding their ongoing war. But markets remains strongly resilient and behaves in a very positive way when there is some positive news at the global level.
0: Okay, I have two sector related questions to you. How exposed are Indian IT and pharma to any US slowdown or policy shifts? Also, the PSU banks and financial, will they remain the index drivers, and is that sustainable?
2: Yes, Lake Saab, because last year 25-26 was very challenging for the India's economy and India's external sector, but our economy proved very resilient despite many headwinds from the tariff front. Firstly, from the months of April, May, June, July, thereafter tussle in West Asia. Our external sector was very, very strong and we were in a positive trajectory in our export numbers. Rather, we were higher in with US also in our export figure. That has proved that India is not dependent on any one economy or single economy. We are diversified and our resilience is very strong. Our products are demanded at the global level. That is the strength of our products in the global market, like during the recent 4 months, starting from April, May, June, July, our exports are showing 13.5% growth. And the merchandise exports are increasing significantly, more than 17-18%. So that is the strength of India's external sector, which is now becoming more and more resilient and competitive in the global market. So this has proven that we are our global marketplace is very strong. We are a great support in the global ecosystem. And the growth front, we are already

0: యునైటెడ్ అరబ్ అమిరాత్స్, ఫ్రాన్స్, భూటాన్, శ్రీలంక, నేపాల్, సింగపూర్, మారిషియస్, ఖతర్, కంబోడియా, గ్రీస్ అండ్ మాల్దీవ్స్. సో దిస్ ఈస్ బికమింగ్ నౌ రోబస్ట్ సిస్టమ్ ఫార్ అవర్ గ్లోబల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ సపోర్టింగ్ అవర్ ఎకానమీ సిగ్నిఫికెంట్లీ. సో డిజిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ అవర్ ఎకానమీ ఇస్ నౌ బికమింగ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ స్ట్రాంగ్ ఆన్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ దీస్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ది రీసెంట్ ఇయర్స్.
1: आगे बढ़ते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना है. इसके अलावा निवेश संबंधों को गहरा करने और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा. वित्त मंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक निवेश गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 0.7% बढ़ा और जापान का निक्केई 225 आधा प्रतिशत ऊपर आकर बंद हुआ. एशियन मार्केट में आज बहुत ज्यादा हमने उथल पुथल नहीं देखी, क्या कारण इसके रहे होंगे?
0: वही जो मैंने बताया कि एक तो क्रूड में थोड़ी स्टेबिलिटी देखी गई है और दूसरा जो एक पीस प्रोसेस की बात होती है कई बार जो उसको देख के भी, क्योंकि मार्केट्स अभी एक पीछे काफी महीनों से हमने देखा कि बहुत ही कंफ्यूज्ड मोड में है. मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है. तो दैट्स व्हाई जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है जैसे काफी एशियन मार्केट्स में वो बहुत कम हो गया है. जैसे हमारा इंडिया के उसमें हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है जब भी कोई पीस प्रोसेस आती है, लेकिन काफी मार्केट्स ऐसी हैं कि उसमें कोई ऐसा प्रोसेस भी होता है तब भी वो स्टिकी जोन में ही रहती हैं, उनमें कोई मेजर प्रभाव देखने को नहीं मिलता. तो ये भी एक कारण है.
2: Moving on, the United States has imposed sanctions under Operation Economic Outcast on nearly 60 entities, individuals and vessels over their alleged links to Iran's military activities, procurement networks and petroleum and petrochemical trade. In a fact sheet released by the U.S. State Department, the measures aim to further expose individuals and entities that enabled strikes against U.S. forces and allies and to restrict the revenue that the Iranian regime uses to attack its neighbors, support terrorism abroad, brutally oppress its own people, and hold the global economy hostage. Very briefly, how do you think India should react to such an Operation Economic Outcast, or how will the world at large react to the Operation Economic Outcast, and what repercussions could it have on the world economy?
0: Yes, repercussions can be in the financial markets, and because financial markets are already very volatile since the last many months or quarters. So going forward, we have to watch carefully the developments in the financial markets and stability about the exchange rate movements particularly, so that the fundamentals of the economy are not impacted or face such kind of repercussions.
1: आगे बढ़ते हैं. ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए उसके पास 2 साल की योजना है. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की घोषणा करते हुए इसे आर्थिक डी डे बताया है. वहीं ईरान के वित्त मंत्री अली मदनी जादे ने कहा कि उनका देश इन कदमों के लिए तैयार है और उसके पास जवाब देने के अपने साधन है. ईरान ने चेतावनी दी है कि वह क्षेत्र से तेल का निर्यात रोक सकता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज जल डमरों मध्य से जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकता है. एसपी, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर, और खासतौर पर ऐसे समय में जब भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और ऑयल्स के जो प्राइसेस और तेल की जो कीमतें हैं उनमें भी उतार चढ़ाव देखने, कभी बढ़ रहे कभी गिर रहे, भारतीय बाजारों को कैसा असर इस पर देखने को मिल सकता है?
0: देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट होती है, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अभी तक हमने नतीजा देखा है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमारी मार्केट है स्टेबल है, मार्केट में मतलब ऑन एन एवरेज जो है स्टेबिलिटी दिखाई है, एक कोई ऐसी डीप डिसेलरेशन नहीं आई जहां पे मार्केट जाके सेटल हो गई हो, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान हुआ हो, मार्केट ने रिकवरी ना किया हो. तो मार्केट हमारी रिकवर करती है. ये जो वॉलेटिलिटी है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आती है कभी नेगेटिव आती है, तो इनकी वजह से मार्केट में उतराव चढ़ाव जरूर है, लेकिन एक जो प्रोलॉन्ग जो

0: जिसकी हम बात करें कि करेक्शन आ जाए, वैसा मार्केट में रुख नहीं देखा गया।
1: लेकिन इसका असर अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उस पर भी काफी क्षेत्रों में नजर आने लगा है, ऐसा आपको लगता है?
0: ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी नंबर है अभी भी बहुत अच्छे से एंटिसिपेटेड है। वी विल ग्रो मोर देन 7% इन द करंट ईयर ऑल्सो, दैट इज द एस्टिमेट। दो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव प्रोवाइडेड 6.5-7%, 6.5-7% के बीच में तो बहुत सारे अनुमान है। और इसके अलावा जो जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक्सपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग है, आईपी नंबर स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन एक स्टेबल ट्रैजेक्टरी में है। तो ऐसी जो वॉलेटाइल न्यूज है वो एक दिन दो दिन के लिए मोमेंटली कुछ ऐसी वॉलेटाइलिटी भय पैदा करती है, लेकिन जो जो अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म में एक महीने में दो महीने के अंतराल में मार्केट्स एक स्टेबल लेवल पे ही बिहेव कर रहे हैं।
1: तो यानी निवेशकों को इस पॉइंट पर आकर के घबराने की जरूरत नहीं है?
0: जी बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूंगा कि खास करके जो रिटेलर है उसको ऐसे मूवमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टेड है तो रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ना कि ऐसे पैनिक में आके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ करें, क्योंकि मार्केट्स देखा गया है जो ट्रेंड है, मार्केट्स अगर गिरावट आती है तो बहुत शार्पली रिकवर करती है।
2: सो हाउ शुड इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड इन्वेस्टर्स हेज अगेंस्ट अ जियोपॉलिटिकल ऑयल स्पाइक?
0: I believe this is very good question, because we have observed significant volatility in the crude oil prices. The prices are prevailing in the trajectory of 50, more than 50-60%, like $55 per barrel to more than $100 per barrel. So there are major corrections also. Crude decelerates sometimes to the level of 70, somewhere 70-75. So we have opportunity. When there is a great correction in the crude oil prices, then we should build our inventories, build our stocks, so that the future trajectory remains strong and we are not worried about the days that we have now, 50 days or 60 days. We should be operating on more than 100 days like many other countries.
2: Global crude oil prices declined over 3% today. Brent crude was trading 3.4% down at $89.01 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% lower at $81.94 per barrel when reports last came in. Aspi, why has the oil fallen despite fresh U.S. sanctions on Iran?
0: Because when there are sanctions, the demand trajectory or the business activity will be impacted. So, anticipating the lesser demand for the fuel. So that's why when there is some negativity at the global level, then the speculation or spikes also not work that much strongly. So that is the, I believe,
2: reason for this. So if the price remains at this level that we are talking about, how does that change your outlook for India's inflation?
0: My outlook growth for India's inflation will remain stable. Inflation will remain within the RBI band. Though crude prices may prevail somewhere between $90 to $100, but still we have our supply chain very strong, and there will not be any impact on the inflation trajectory, and growth is already resilient, and our fundamentals are very strong to support the growth trajectory.
1: श्रोताओं, सराफा बाजार में सोना आज मामूली गिरावट के साथ 1,62,041 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1.4% गिरकर 2,41,848 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एसपी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू
2: फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices rise, Sensex jumps nearly 300 points, Nifty settles above 24,300. Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: Namaste. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय है गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम का, जिसमें हम सुनवाते हैं आपको सुनहरे दौर के सदाबहार गीत, वो भी बिना रुके। तो चलिए शुरू करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। भारत ने कल भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पेजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों के जरिए सीमा व्यापार सहित लोगों के बीच बढ़ते संपर्क पर संतोष व्यक्त किया। इससे पहले 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने H1N1 इन्फ्लुएंजा, डेंगू और मलेरिया की स्थिति को लेकर अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बीमारी की स्थिति, निगरानी, अस्पतालों की तैयारियों, दवाओं और जांच सुविधाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने MCD, NDMC और दिल्ली छावनी को स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास एंटी लार्वा अभियान छिड़काव और छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned a global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The finance ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to countries' private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said, strong internal security is essential to achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a Viksit Bharat by 2047. He said, if previous governments had addressed narcotics, Naxalism and challenges in the Northeast before they became major crisis, the country could have avoided decades of suffering. He said the government has now eliminated these three major internal security challenges and credited state police forces, central agencies and CAPFs for the achievement. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of special representatives' talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behl, was addressing the media in New Delhi yesterday. He said that the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Delhi government has said there is currently no shortage of onions or sugar in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital. Government said if the prices rise further, it will procure onions and sugar from a central government institution, NAFED, and arrange to make them available at various locations across the capital. It is also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. President Draupadi Murmu has extended greetings to people on the eve of Onam and Eid e Miladun-Nabi. In her message, the president said, Onam is an occasion to express gratitude to nature on arrival of the new harvest. She expressed hope that the festival will inspire the citizens to contribute to the nation's progress. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of the Colombo Test. Sri Lanka are trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh and East Rajasthan today. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain during the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi with swells of light to very light rainfall for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके साथ सुरभि और मैं लेकर हाजिर हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, जिस्म में ढल के मेरी रूह रवा में आना। इश्क ने देख लिए हुस्न में आफाक तमाम, इश्क ने देख लिए हुस्न में आफाक तमाम, एक सकते का वो उम्रे गुजरा में आना, मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, जिस्म में ढल के मेरी रूह रवा में आना।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जी हाँ, जब कभी इस खूबसूरत रात में आसमां से चांद चमकता है तो शायद उसे भी अपनी मोहब्बत पर नाज होता होगा। चांद की रोशनी, ठंडी हवाओं का एहसास और ऐसे में किसी की याद, इन सब के बीच रात और भी हसीन हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ किसी के साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि कई बार दूर रहकर भी आप उसे अपने

करीब महसूस करते हैं ये भी मोहब्बत ही है। तो अगर आज की रात आपके दिल में भी किसी की याद दस्तक दे रही है तो उस याद को छुपाइए मत, कुछ पल आंखें बंद कीजिए और उस चेहरे को, उस मुस्कुराहट को याद कीजिए जो आपकी पूरी दुनिया को खूबसूरती से भर देती है। और चलिए ऐसे में हम सुनवाते हैं आपको एक गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म है धरती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्म के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, कुछ लोग हमारे सामने होकर भी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों का ठहरना उनकी बहुत सारे दिल की बातें बयां कर जाती हैं। उनकी मुस्कुराहट या फिर अचानक से आई कोई याद हमारे दिल को खुश कर जाती है, और उस वक्त वो छोटे छोटे इशारे याद आते हैं जिससे मोहब्बत अपना पता छोड़ जाती है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक इशारा ही काफ़ी होता है, और जिसे समझना होता है वो इशारे से भी समझ जाता है, खामोशी से भी समझ लेता है। तो चलिए, जब बात इशारों की हो रही है तो इशारों ही इशारों में सुन लेते हैं रफ़ी साहब और आशा भोसले को कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत में।

रात के खामोश पहर में जब शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं तब कुछ यादें और साफ सुनाई देने लगती हैं। कभी किसी खास शख्स की मुस्कुराहट यूं ही ख्यालों में आ जाती है, बिना दस्तक बिना वजह। शायद एहसास लफ्जों के मोहताज नहीं होते, बस एक सुकून दे जाते हैं। तो चलिए अपनी आंखों को जरा बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए उस खामोशी को, उस याद को, उस मुस्कुराहट को जिसमें किसी की मौजूदगी शामिल होती है। और अब उसी एहसास को थाम कर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए कैसा है गीत जिसे सुनकर आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाएगी।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर रात का एक मिजाज होता है, दिन की भागती दौड़ती जिंदगी में जिन बातों के लिए वक्त नहीं मिलता, वही बातें रात की खामोशी में ना जाने क्यों याद आने लगती हैं। कोई पुराना चेहरा, एक अधूरी सी मुलाकात, या फिर किसी की कही हुई वो छोटी छोटी बातें जो बरसों बाद भी दिल में कहीं ठहरी होती हैं, छुपी होती हैं। और जब हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत या गाने, तब वो पुराने खूबसूरत एहसास अचानक उभर आते हैं। शायद ये धुन हमें या आपको एक ऐसे ही शख्स की याद दिला देती है जिसे याद करने के लिए वैसे तो किसी वजह की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है।

जब कोई पुरानी याद चुपके से पास आकर बैठती है और शहर की आवाजें अंधेरे पड़ जाती हैं और रात का सुकून भरा पहर होता है, ऐसे में दिल की बातें कुछ ज्यादा याद नहीं आने लगती। कभी सोच कर देखिए आप, कभी अकेले बैठ कर देखिए आप, तब आपको कोई चेहरा, कोई मुलाकात या किसी के आवाज, किसी की स्वर आपको जरूर सुनाई देंगे। और उस वक्त हम मुस्कुरा कर सोचते हैं कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते बल्कि खामोश हो जाते हैं। कैसी खूबसूरत थोड़ी सी अधूरी सी कहानी के नाम, चलिए सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुँच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा सहयोग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल युवा और खेल मामलों की संसदीय

समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर छठी बैठक थी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, ये भी क्या कम है कि उसको गवारा हो जाऊं। मुझको ऊंचाई से गिरना भी है मंजूर अगर, मुझको ऊंचाई से गिरना भी है मंजूर अगर, उसकी पलकों से जो टूटे वो सितारा हो जाऊं। मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, ये भी क्या कम है अगर उसको गवारा हो जाऊं।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कहते हैं कि रात जितनी खामोश होती जाती है, दिल उतनी ही साफ तरीके से और साफ आवाज में पुरानी बातें सुनने लगता है। एक चेहरा याद आने लगता है, किसी की बातें, किसी की हंसी कानों में उतर आती हैं। शायद खूबसूरती है यादों की, ये सब वो आती हैं तो कोई दस्तक नहीं होती, बल्कि बहुत ही खामोशी से चुपचाप पास बैठ जाती हैं, जैसे बरामदे में रखी कुर्सी पर आकर कोई अपना बैठ गया हो और हम बिना कुछ कहे बस उसके साथ उस बीते हुए वक्त को महसूस करने लगते हैं। और मोहब्बत भी शायद ऐसी ही चीज़ है, क्योंकि हमेशा इजहार की ज़रूरत नहीं होती। कभी किसी की खामोशी में उसका ख्याल मिल जाता है और कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही उसकी याद आ जाती है, और कभी रात के सन्नाटे में दिल बस इतना चाहता है, इतना ही कहता है कि काश काश वो इस वक्त यहाँ मौजूद होता या मौजूद होती। तो अगर आपके पास भी वो ख़ास इंसान इस वक्त नहीं है जो आपसे दूर है, लेकिन आपके दिल में है, आपकी यादों में है और आपके आपके पास मौजूद रहता है हमेशा, तो ये जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस गीत को सुनकर आप उसे एक बार फिर से याद कर बैठेंगे। जी हाँ, फिल्म है दिल एक मंदिर, लता मंगेशकर की आवाज़ में

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमालय की गोद फिल्म से ये गीत। जिसे आवाज दी है मुकेश साहब ने।

जैसे कभी कभी मौसम बदलते हैं, ठीक वैसे ही रिश्तों में भी ना ये मौसम बदलता है। बात वही रहती है, इंसान वही होते हैं, लेकिन लहजे में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। कोई अपना रूट जाए तो घर वही रहता है, शाम वही रहती है, लेकिन न जाने क्यों सब कुछ अधूरा सा लगता है। और ऐसे वक्त में मन यही सोचता रहता है कि आखिर नाराजगी किस बात की है, और वो छोटी सी मुस्कान फिर कब लौटेगी। शायद मोहब्बत की खूबसूरती भी यही है कि रूठने में भी एक अपनापन छुपा होता है। तो चलिए ऐसा ही एक नगमा आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर मन की जो खटास है वो दूर हो सकती है, फासला थोड़ा कम हो जाना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत सी धुन है, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, फिल्म है शागिर्द, रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं ये गीत, वो है जरा खफा खफा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने, और चलिए गीतों की इस बहुत ही खूबसूरत सी महफिल में अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है किस्मत, और गीत को आवाज दी है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने।

कुछ गीत अपने संगीत की वजह से याद नहीं रहते बल्कि वो अपने साथ एक पूरा समय लेकर चलते हैं और कुछ गीत उस दौर की सहजता रिश्तों की गर्माहट प्रेम की मासूम शरारतों को भी लेकर चलते हैं। कुछ गीतों में लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू भी शामिल होती है जिसे हम जब भी सुनते हैं वो हमें हमेशा एक नया ही लगता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

पर यहीं तक हमारी मुलाकात होगी एक बार फिर 2:10 पर रात सुरमई प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजना को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री स्टेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जाने चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह इस मुद्दे पर 6ठी बैठक थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के मामले में गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध शराब में बड़ी मात्रा में मेथनॉल मिलाया गया था और इसे एक लोकप्रिय ब्रांड के नकली लेबल वाली बोतलों में बेचा जा रहा था। भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 के 14वें चरण में विक्रांत पांचाल ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ का खिताब जीत लिया है। एथलेटिक्स सीरीज का अगला चरण 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Siva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed six key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning nine states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between their leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security, addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi. Mr. Shah said, strong internal security is essential to achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a Viksit Bharat by 2047. The minister said, government has successfully eliminated issues of narcotics, Naxalism and the challenges in the Northeast. He credited state police, central agencies and CAPFs for these achievements. The Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far, and overall 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. Secretary, Department of Consumer Affairs Nidhi Khare has said that Kanda Express is bringing about 800 metric tons of onions to Delhi. In a social media post, the secretary said the onion will be sold at 35 rupees per kilogram at NAFED, NCCF and Kendri Bhandar stores. She informed that Kanda Express will initially reach Chennai, Ernakulam, Madurai and Guwahati. The Delhi government has said that there is currently no shortage of onions or sugars in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital. Government said if the prices rise further, it will produce onions and sugar from NAFED and arrange to make them available at various locations across the capital. It has also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people on the eve of Onam and Eid Milad-un-Nabi. In her message, the president said, Onam is an occasion to express gratitude to nature on arrival of the new harvest. She expressed hope that the festival will inspire the citizens to contribute to the nation's progress. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of the Colombo test. Sri Lanka trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Dev.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई। खराब दर्द हुए गम परिस्थिति में रहे, खुशी की खोज बहाना थी मस्तियों में रहे। हर एक से झुक के मिले यूं कि सरफराज हुए, अजब मजाक से हम घर की गृहस्थियों में रहे। खुशी की खोज बहाना था मस्तियों में रहे।

जब हम कोई गीत सुनते हैं तब हमारे मन में गीत और संगीत के साथ साथ कुछ भावनाएं भी साफ सुनाई देने लगती हैं और इंतज़ार उन्हीं एहसासों में से एक है जहां वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है लेकिन ये मन किसी एक पल पर रुक जाता है ठहर जाता है किसी खास कियामत की उम्मीद उसकी आहट का ख्याल और इस भरोसे का बना रहना कि दूरी चाहे जितनी हो मुलाकात कभी न कभी ज़रूर होगी तो इंतज़ार और मोहब्बत की उम्मीद को बड़ी ही खूबसूरती से

फिर होता है हमारा अगला गीत। जी हाँ, चलिए आपको सुनवाते हैं यलगार फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज में।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले जिंदगी से भाग कर आया हूं
1: बारिश हो रही है ये बारिश ना होती तो भी ना

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ रिश्तों की अहमियत उनकी मौजूदगी में कम और उनकी कमी में ज्यादा महसूस होती है। कोई अपना पास ना हो तो जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि जिंदगी के मायने थोड़े से बदल जाते हैं। वही दिन, वही रातें, वही शाम, वही रास्ते, लेकिन पता नहीं क्यों ये मन उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को ढूंढता रहता है। शायद मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप यही है कि जब वो दूर हो जाता है, फिर भी उसका ख्याल रोजमर्रा की जिंदगी में साथ चलता रहता है। और ऐसे में कोई धुन अगर कानों में पड़ जाए तो उसकी याद आ जाती है, या फिर कोई जगह देखते ही उसका जिक्र मन में उतर आता है। इसी खामोशी, इसी कमी और गहरे लगाव को पेश करता है ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें, पूरे होंगे अपने अरमा किस तरह, पूरे होंगे अपने अरमा किस तरह, शौक बेहद वक्त है कम क्या करें। बख्श दें प्यार की गुस्ताखियां, बख्श दें प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। बख्श दे प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें।

ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। अपने दिल को भी बताऊं न ठिकाना तेरा, सबने जाना जो पता एक ने जाना तेरा। ये समझकर तुझे ए मौत लगा रखा है, काम आता है बुरे वक्त में आना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा।

और इसी गीत के साथ रात सुरभि का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इसी के साथ नमस्कार, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर 6th बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंग बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में प्रज्ञान नंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आर एस रघु।

रात की खामोशी में एक सदा आती है, हर एक याद बीते वक्त की हवालाती है। कुछ वादे जो गए थे राहों में कहीं, आज फिर ये शब उन्हें दोहराने आती है। जी हाँ, रात का ये सुकून और इसी गहरी खामोशी में उभर कर आती है वो बातें, वो वादे जो हमने कभी किसी से किए थे, या हमसे किसी ने किए थे, या फिर हमने खुद से किए थे। कुछ वादे जो उम्र भर निभाए गए और कुछ जो वक्त के साथ अधूरे रह गए। तो आइए इस प्यारे से वादों और यादों की दुनिया में रूबरू होते हैं हम और आप हमराही कार्यक्रम में, जिसमें अनमोल वादों की यादों का खजाना गीतों की जुबानी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस सफर पर आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही के दोस्त, आप ही के हम सफर, रूबा धवन। नमस्कार। तो तैयार हैं आप इस वादे के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे जब तक हम रहेंगे? इसी वादे के साथ हम भी आपके साथ हैं और सुनवाएंगे आपको बेहद ही खूबसूरत से गीत वादे शब्द पर। तो जुड़े रहिए इसी तरह और सुनते रहिए बहुत ही मधुर मधुर तराने हमराही के सफर पर।

साथियों, दिन की रोशनी में हमारा दिमाग बस सिर्फ चारों ओर के शोर में और जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, पर रात जब गहराती है तब कमरे की खामोशी एक आईने की तरह काम करती है। उस आईने में बहुत सारी बातों और वादों की तस्वीर अचानक से उतर आती है और हम उन्हीं ख्यालों में खो जाते हैं जिसमें वादों का और बातों का सिलसिला होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 3:29 और 7 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ हमराही कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वादों से रचे गए गीत। और जनाब, वादे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ इस तरह की भावनाएं होती हैं। ना चांद की चाहत, ना तारों की फरमाइश, तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे, बस इतनी सी है ख्वाहिश। जिंदगी के हर मोड़ पर तेरे साथ खड़ा रहूं, आज इस दिल की भी बस यही है आखिरी गुजारिश।
1: वादा?
2: हाँ वादा।

एक वादा हवाओं से किया था, एक वादा हवाओं से किया था कि तुम जब भी आओगी उसकी खुशबू लाओगी। एक वादा रातों से किया था कि तुम जब भी आओगी गहराओगी उसके दिए ख्वाब लाओगी। वक्त बीत गया, मौसम बदल गया, कुछ इंसान दूर हुए, कुछ रास्ते बदल गए, पर इस शब की खामोशी में आज भी वही वादे पुराने मेरे साथ नए बनकर ढल गए।

साथियों, अक्सर रात को कोई पुरानी किताब सिराहने रखी या तकिया, खिड़की से आती ठंडी हवा या सिर्फ आपकी बंद आंखें ही चाबी बन जाती है। इसी वक्त वो पुराने वादे सामने आकर खड़े हो जाते हैं।

सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें धोखे का एहसास भी है और वादे का एहसास भी है. इस एहसास को अपने स्वरों से पिरोया है किशोर कुमार साहब ने. फिल्म है दुश्मन और गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

वादा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से भी निभाए जाने वाला एहसास होता है। सबसे प्यारा वादा वो है जो बिना कहे आंखों से निभाया जाता है। कारवां फिल्म का ये गीत आप सभी सुन रहे हैं रफी साहब और लता जी के स्वर में।

रात के वादों से ये मुलाकात असल में हमें ये एहसास कराती है कि वक्त कितना भी बदल जाए, हमारी नीयत और जज्बात आज भी जिंदा हैं।

रात ढल रही है पर यादों का चिराग जलता रहेगा, वादा रहा फिर मिलेंगे ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ फिलहाल रूपा विदा लेती है। 4:10 पर फिर से आपके साथ रहूंगी अरुणिमा कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड

0: पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है।
1: इस दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिवसीय दौरे पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत के महावाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने उनका स्वागत किया। इस दौरे के दौरान वह कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इस वार्ता में दोनों देश आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, निवेश और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री अमेरिका के लिए रवाना होंगी, जहां वह G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह इस मुद्दे पर 6वीं बैठक थी। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भी भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आपका अपना साथी, अपना दोस्त सदाबहार आपका चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां रात का गहराया अंधेरा धीरे धीरे हटकर उजले सूरज की किरणों को अपनी आगोश में पनाह देने की तैयारी कर रहा है। और ये वक्त है अरुणिमा का, 4:11:38। अरुणिमा में आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही की हम सफर, आप ही की अपनी, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

आपने देखा ही होगा, जो पौधे पानी और धूप पाते हैं वही फूल खिलते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी वही व्यवहार दोहराता है। जिसे सराहा जाता है वो खूब तरक्की पाता है, मन की शांति पाता है और हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है। आशाओं और निराशाओं के दामन से लिपटा हुआ आदमी, उसकी ज़िंदगी में जब निराशाएं आती हैं तो वो हताश नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ पाकर हमेशा आशा का दामन थामता है और थामकर हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के रास्तों पर चलता है।

किसी को भी गलतियां गिनाना आसान होता है, पर किसी के छोटे प्रयास को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना ही असली समझदारी है।

साथियों, सफलता पाने के लिए जब हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तब नतीजे का इंतजार न करके अपनी तरफ से हम बार बार सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें हम सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और जब सफलता हमें मिल जाती है तो ये खुशियों को दोगुना कर देती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 4:36 और 7 सेकंड। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ और हम बातें कर रहे हैं सकारात्मक विचारों की। कभी कभी हमें गिराने वाले इंसान वरदान बन जाते हैं जो हमें और भी मजबूत और समझदार बना देते हैं, और जिंदगी में ऐसे दोस्तों का होना भी जरूरी है। दोस्त क्यों ना कहें उन्हें, जो हमारे जीवन में मजबूती देते हैं, हमें एक तरह का सहारा देते हैं समझदार बनने का। तो वास्तव में तो हमारे लिए वही दोस्त हुए ना, तो ऐसे दोस्त भी जिंदगी में होने चाहिए।

दोस्त हमें हमारी खूबियां बताते हैं ताकि हमारा हौसला बढ़े, और कुछ लोग हमारी कमियां ढूंढते हैं। पर ये कमियां भी ढूंढने हैं जब, तो इन कमियों पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम अपने आप में बेमिसाल बन जाते हैं। तो कमियों से घबराएं ना, बल्कि उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें।

जी हाँ, जीने की राह तो हमें सच्चे दोस्त ही बता पाते हैं, या फिर हमारे आदर्श हमें जीने की राह देते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। खुद पर विश्वास हमारे मन को मजबूत बनाता है, जो हमारे विचारों को और भी ज्यादा समृद्ध करता है। वक्त हुआ है इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:44 और लीजिए हो गए 45 मिनट और 3 सेकंड। आप है रूपा के साथ अरुणिमा के सफर पर।

किसी के द्वारा झूठे सपनों में ना जीकर खुद पर यकीन करके जब हम जिंदगी की नाव पर सवार होते हैं तब वो यकीन हमारे सपनों को संवार कर हकीकत में बदल देता है। वो हकीकत जिसे पाने की जद्दोजहद में हमने ना जाने कभी कितने त्याग और समर्पण किए थे।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से खुशियों की बौछारें लाते हैं कि कभी अपनी बातों से कभी भावनात्मक रूप से जुड़कर हमें एक नई ऊर्जा में बदल देते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीने का नजरिया ही बदल जाता है जब हम उनके साथ रहते हैं। वाकई इन खास रिश्तों की अपनी ही एक खास जगह है और ये खास जगह हमें बनाती है उनके साथ, जिन्हें हम अक्सर रिश्तों में ढूंढते हैं जो हमारे बहुत ही खास हैं।

5:10 पर भोर सुहानी कार्यक्रम होगा जिसमें आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। फिलहाल अरुणिमा से अनुमति दीजिए, रूपा धवन को नमस्कार। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त

0: अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में कल उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैंपेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका रवाना होंगी। भारत ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के 25वें दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल कार्य मंत्री की संसदीय समिति ने बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से विकसित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भारत से अभी 238 रन पीछे है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by RS Raghu. Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Sevatirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministry, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry in a statement said that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2020.

लीजिए जनाब, खुशियों की भोर आ गई है। धीरे धीरे मंजिलों के रास्तों से होते हुए आपके घरों तक सूर्य की किरणें आ रही हैं आपको जगाने के लिए। समय हुआ है 5:11 और 19 सेकंड। आप हैं भोर सुहानी में अपनी दोस्त रूपा के साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

ठंडी हवा का ये झोंका एक मीठा सा संदेश लाया है। उठो, जागो और पहचानो, तुम्हारा नया सवेरा आया है। आसमान का ये सुनहरा रंग गवाही देता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी का ही साया आया है।

घड़ी की सुइयां जल्दी जल्दी दस्तक दे रही हैं और बता रही हैं 5:23 हो चुके हैं 12 सेकंड। आप हैं भोर सुहानी में मेरे साथ, यानी अपनी ही दोस्त रूपा के साथ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो दोस्तों, भोर का समय आपसे कह रहा है बीती बातों को भूल जाइए। जी हाँ, बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि वो इतिहास बन चुकी हैं, वो सिर्फ यादों के रूप में रह चुकी हैं। आज के दिन को सुखद पल बनाने के प्रयास में जुट जाइए जनाब, और जल्दी से उठिए क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि क्या पता आज आपने किसी से मुलाकात करनी हो।